ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज केलो अनद खेलो, रहे फेर पै मेल, नानक गुर शब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो काटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए बिच हो मैं बदे बेकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा भेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप करम हों किए, ते बंद परे, जौ साधु कर मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए, जौ लो मेरो मेरो करतो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए।

क्या किश करै के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो। एहो जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निम निम लागौ पाई जियो। पोथी पंडित बेद खोजनता जियो, होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो। गीत नाद कीर्तन गावंता जियो, हर निरपौ नाम ते आई जियो। पए कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतत पवित लग गुर के पैरे जियो, भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो, गुरमन की आस पुराई जियो। जिन नाव पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो। जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जन नानक सहि समाई जियो। गौड़ी महला पंजवां माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो। संत देव संदेसा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बिन तरिए जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो। से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो, पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो, चरण पखार करी ने सेवा जियो। पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकर पै कहिए जियो। इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो, दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो। एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवां। सुन सुन साजन मन में।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जान, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्वाना, जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर

निस्मग्न रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे मृग तृष्णा। ज्यों झूठो एहो जग, देखता से उठतावे भुगत मुगत का कारण स्वामी, मूढ़ ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे, गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सबको हिरलीना, तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बिद बने।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै, नानक मुक्ताहे तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औध कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औध सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिखठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवै मन हास्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई जल निवरी गुर बुझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखो कैसा सागर डूगर निरपो वैसा मुवे कहो कहो मारे कौन निडरे कहो कैसा डर कवन शब्द पछाने तिन्ने पौन जिन कहया तिन कहन वखानिया जिन बुझया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तही निरंजन रया समाई निजकर ब्याप रया निठाई औसत कर है केते मुन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत नानक हर पज नीता नीत गौड़ी गुआरे री महला पहला ना मन मरे ना कार्ज होए मन वस दूता दुरमत दोए मन मन गुरते एक होए निर्गुण राम गुणे वस होए आप निवार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बहुचित विकार मन भूलो सिर आवै भार मन मन हर एक अंकार मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्धो रह न ठाए हर पज प्राणी रसन रसाए गैवर हैवर।

तृष्णा यगनो शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमती नावरदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तन मैं साचो गुर

ब्रतशील संतोखं रोग ना व्यापै ना जम दोखं मुक्त भय प्रभु रूप नारेखं। जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन त्यावै अंदर जागै सच लिवलावै सो जोगी मेरे मन भावै। काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्भ निवारे आप तरे पितरी निस्तारे। सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रह सो निरप होए जैसा सेवै तैसो होए। नर नह केवल निरपौ नाम अनाथ है नाथ करे बल जाओ। पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने। गुर कै शब्दे आप पछाणे साचै शब्द उदर निशाणे। शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा। गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै।

ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई। दर्शन देख पई मत पूरी, अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ। नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर सारा। सच करनी अवे अंतर सेवा, मंत्र तासिया अलख भेवा। जै जै देखो तै तै साचा, बिन बूझे झगड़त जग काचा। गुरसम जावै सोजी होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु भय बेताले। गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा। संत हेत प्रवतर पवन धारे, आत्म चीने सो तत् बिचारे। साच हृदय सच प्रेम निवास, प्रणवत नानक हम ता के दास। गौड़ी महला पहला, ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया। वेद की बिपत पड़ी पछतानिया, जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार। रहाओ बल राजा माया अहंकारी, जगन करे बो पार अफारी। बिन गुर पूछे जाए प्यारी, हरि चंद दान करे जस लेवै। बिन गुर अंत ना पाए अपेवै, आप भुलाए आपे मत देवै। दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी। प्रहलाद उधारे कृपा धारी,

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सा

नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला। प्रथमे ब्रह्मा कल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संघारिया। हम हर राखे गुर शब्द बिचारिया रहाओ, माया मोहे देवी सब देवा। काल ना छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी लाख्या पेवा। सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जमका दुख सहना। मैं तर नाम ज्यो राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम। साह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरि अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार। अफर्यो काल कूड़ सिर मारे, निश्चल एक सच्चा सज सोई। जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी सेख पेख फकीरा, वड्डे कहावै हम मैं तन पीरा। काल ना छोड़ै बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जिहवा यार नैनी, कानी काल सुने बिख बैनी। बिन सबदै मूठै दिन रैनी, हृदय साच वस्या हर नाए। काल ना जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला। बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई। रह अतीत सच्चे सरनाई, सच कर बैसै काल ना जो है। मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अपियो पियो अकथ कथ, अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है। हर रस माते ओ सुख कही है, गुरमत चालो निचल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत् विरोले। सतगुर दीखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच ज्योतिया पार, जय देखो तह एक ओंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्राह्मणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। सासन दुखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम।

आए गुरमुख नाम वसै मन आए गुरमुख कर्म तर्म सच सोई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन पर बोधो बूझो सोई लोग समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मनमुख डंफ बहुत चतराई जो किश कमावै सो थाए ना पाई आवै जावै ठौर ना काई मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना बग ज्यो लाए बह नित्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुरु सेवे मुक्त ना होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे वड्याई सायर की पुत्री बिदार गवाई नानक बिन नामे झूठी चतराई गौड़ी महला तीजा इस जोका धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुर सब सो जी पाई एथे अगे हर नाम सिखाई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैं लियो तार रहाओ वाद विरोध ना पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर कै शब्द सच लिवलाए हाउ मैं मैला एहो संसारा नित तीर्थ नावै ना जाए हंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सोजन साचा जे हों मैं मारै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोहे नट बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख लिबत रहे लिवलाई बहुते पेख करै पेख धारी अंतर तिसना फिरै हंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतराई।

सहितन उपजय हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण का लै की सिरकारा, नाम नाचे तय उपावन हारा, मर जमै फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम ना जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई। बिखका माता बिख माहे समाई, माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए। अंतर साच बाहर साच वरताए, साच ना छपै जे को रखै छपाए, ज्ञानी बूजै सह सुभाए। गुरमुख सांत रहया लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए। सतगुर दाता शब्द सुनाए, तावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। आपे करता सिरहिट सिर जन गोई, तिसबिन दूजा अवरना कोई, नानक गुरमुख बूजै कोई। गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सही समावै। अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावै। आनदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुणतास, दासन दास नित होवै दास, गृह कुटम मैं सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिलै प्रभ सोई। मोह कुटम्ब सो प्रीत ना होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरमुख मन बेदया स्थिर होए, हुक्म पछाणे बूझै सच सोए। तू करता मैं अवर ना कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करै गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग मै लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसै अंदर लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरै वडभागी। हम मैं ममता दुरमत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रव्या चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए, हृदय साचा नाम वसाए, नानक सहजे साज समाए। गौड़ी महला तीजा, मन ही मन सवारिया पैसे सुभाए, शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वसिया प्रभ की रजाए। सतगुर सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाइये गुणी निदान। रहाओ मन बैरागी जां शब्द पाओ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तैरया सुमाए। गुर कृपा ते मिलै मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामण मोह गुवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार। त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत ना होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर ना कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई। सदा आनंद हर नाम लिव लाई, गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध पई, हों मैं तृष्णा सब अग्न बुझई। बिन से क्रोध खिमा गै लई, हर आपे कृपा करे नाम देवै, गुरमुख रतन।

में लाए, मन करहला तू मीत मेरा, पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए, मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लै जाए, मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए, मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दरगह पहनाया हर आप लया गल लाए, मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कुमाए, गुर आगे

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चल तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरी ना ता तेर मैया कड़कड़ जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ, जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई तां ते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करना हर पिछाता तब इसनो नाही किस्ताता, जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवै जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड यार खेदा। जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया, जब एहो तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किसे कै आपे बुद्ध विचार बबे कै। दूर ना नेरे सब कै संगा सा सालाहण नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा। तिसकै हृदय रव्या सोए मंतन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे जा जपत हम मैं पागे। जास जपत वस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मन सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, भवन न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला धुलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना स्यों संग निवारै। दस इंद्री कर रखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास।
ऐसी दृढ़ता ता कह होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जा कै एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है।

जपना सहजे भोजन सहजे पाओ सहजे मिट्यो सगल दोराओ सहजे होवा साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्म संग सहजे ग्रे मैं सहजो दासी सहजे दुबदा तन की नासी जा कै सहज मन भया आनंद तां को भेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा मैं आत्म रसिया तां कै संग अबनासी बसिया सहजे आसन आसर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रोण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जा को पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा जा कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपरे कवन स्थान जो कबो न टरे कवन शब्द जे दुर मत हर रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना शिवपुरी दा होएगा काला त्रै गुण माया बिरस बिताला गिर तर धरण गगन यार तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत यार भेदा सास्त सिमरत बिनसै गे बेदा तीर्थ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करै गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर कर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद निचर सजथाना तहां संगत साध गुण रसै अनपौ नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवण जावण मृत न होता तै सदा आनंद अनहत आखारे भगत वसै कीर्तन आधारे पार ब्रह्म का अंत ना पार कौन करे ता का विचार कहो नानक जिस कृपा करै निश्चल थान साध संगत रै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तसै वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोए जो दुबदा मार गवावै इसे मार राजो कमावै रहाओ जो इस मारे तिसको पौ नाहे जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगै सजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जदी जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निचल धनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो वंदन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सुगयानी जो इस मारे सो सहित्यानी इस मारी

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेस पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो। नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो रहाओ, नाम बिना जो

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोष नाही सुखै दाते हाँ विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मित प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलिया देसा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आ प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत थाउ गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंदप सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोधरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रव रया दूसर होआ ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसनो आपै सुनो तो आप ही जासनो आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखम आपै अस्थूला लखी ना जाई नानक लीला कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण।

ओवं गुरमुख कियो अकारा, एक सुत परो बनहारा, भिन्न भिन्न त्रै गुण विस्थारं, निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं, सगल पांत कर करै उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दूहू पांते आप निरारा, नानक अंत ना पारा वारा। सलोक सेई साह भगवंत से, सच संपै हर रास, नानक सच सुच पाई है, ते संतन कै पास। पवड़ी ससा सत सत सत सौ, सतपुरख ते पिन ना को, सौ सरन परै जिह पायं, सिमर सिमर गुण गाए सुनायं, संसै परम नहीं कछ व्यापत, प्रगट प्रताप ताहूं को जापत। सो साध

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तांते उजे रुच या मनुआ तन नहीं बांछ सुरग ना अच्छ अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कत न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोय कहो नानक कृपा पही भक्त ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कै दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कै उसन सीत समसर सब ता कै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक कौ आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तप करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जेह मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताकै निकट नाम आए सलोक किरतक मामन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पासे अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप देवायो ओवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिखसोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर्म रत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तौ एउ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे न बुझै सो प्रभ सधू संग लेख

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना अरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओवा महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बिकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या

होवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जाको दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोउ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोउ, एक नाम ले मने प्रोउ। यैया जन्म नहारी है, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिखिया दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का

जा कौ साध कृपाल साधु संगतौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिनासे कदके। सलोक ठाक न होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै शब्द पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ श्रम कर कालै जा का तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जानै जा को दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय कने न कालो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जामै जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अनाहौना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाना रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमे अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेस। अना को जानै अपनो एकै टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रहै सो प्रभ पुरख्या पार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बुझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक उपाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सबदे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रहै।

दें दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहूं कहू मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, स्लोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मन प्रगास, तन साचा तेउ सच सहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, स्लोक नानक नाम नाम जप जपया यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जाको, निद निदान हर अमृत पूरे तै बाजे नानक अनहद तूरे, स्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंत न पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु।

जाय उबरन तारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तरन समराथा राख ले हो निर्गुण नरनाथा मान बच करामो जेह आप जनाई नानक तेह मत।

होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो उसी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रह जाय बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हारे औखद सब कट है भाई गुरपूरे बिन बिदना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी वबा वैर न करिए काहू घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रव्या गुरप्रसाद विरलै ही गव्या वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहनो सगलै ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना मारा दू रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की लाड़ मृत बिन साही अड़ाड़ करत सगत गावारा जे ही है अंब

बेकारा, अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई, निमुख माहे नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट कहो, उक्त सियान पत्याग, गुर दीख्या जे मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी ससा सरन परे अवहारे, शास्त्र सिमरत वेद पुकारे, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सा सा संपूल नहारे, तुम समराथ्या गंता पारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। श्लोक खुदी मिटी तब सुख पए, मन तन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग। पौड़ी खखा खरा सरा होताहू, जो खिनमै उन्ने सुपर पराहू, खरा निमाना होत परानी, अंदर जापै प्रभ निर्बानी, भावै खसम ता उवा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसोवा गणता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे, सरन परो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक ले सुमाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना, हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना, सहस पात करै चतराई, संग तुहारै एक न जाई, सौ सौ जप दिन राती, रे जी चलै तुहारै साथी, साध सेवा लावै जे आपै, नानक तां को दुख ना व्यापै। सरो श्लोक हर हर मुख ते बोलना, मन बूठै सुख होए, नानक सब मैं रवरया, थान थनंतर सोए। पौड़ी हेरो कटकट सगल कै, पुर रहे भगवान, होवते आए सद सदीव, दुख भंजन गुर ज्ञान, हाँ छुटकै होए आनंद तेह, हाँ नाही तह आप, हते दुख जन्मै मरण, संत संग प्रताप, हित कर नाम दृढ़ दयाला, संतै संग होत कृपाला, ओरै कछु न किन्हू किया, नानक सब किछ प्राप्त हुआ। सलोक लेखै कतै न छूटिया, खिन खिन पूलन हार, बख्शन हार बख्श लै, नानक पार उतार। पौड़ी लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अल्प मत, जियो पिण जन सुख दिए, ताहे न जानत तत, लाहा माया कारण, दे दे टुंडन जाए, देवन हार दा तार प्रभ, निमखना मने बसाए, लालच झूठ बेकार मोह, ऐसम पै मन माहे, लंपड़ चोर निंदक महा, तिन्हू संग बिहाए, तुद पावै ता बख्श लै, खोटे संग खरे, नानक पावै पार ब्रह्म, पाहन नीर तरे। सलोक खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक, भवजल ते काढो प्रभु, नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलते आयो, अनक जौन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत, सतगुर बचन समाए, खिमा गही सत संचयो, खायो अमृत नाम, खरी कृपा ठाकर पई, अंत सुख विश्राम, खेब निबाही बहुत लाभ, घर आए पतवंत, खरा दिलासा गुरदिया, आए मिले भगवंत, आपन किया करे आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है, जे कटकट रहा ब्याप। सलोक आए प्रभ शरणागति, कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं तिर भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद बिचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम, मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग, अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना

अविनाशी अगनाश, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संतें कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकर हौ दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए। सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत निरुदरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लगतरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा, एहो श्लोक आद अंत पढ़ना। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विषम भरे कै नाम जपत अगणत अनेकै, वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक अखर, किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै, कांखी एक दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै, प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला, से सिमरै जिने आप सिमराए नानक तां कै लागो पाए।

प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सबके सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभ को सिमरै से पर उपकारी, प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कहो ना चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहि समानी, प्रभ कै सिमरन निःचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभ कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुपमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चल, जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही, अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हौ मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग,
जेह मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा।

जहां त्रिखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रत

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव, महा उदास्त पीसर थी वह। अग्न माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगर नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा।

सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम मैं उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जेह कट वसै हर नाम, सलोक निर्गुण यार ए अन्या, सो प्रभ सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभी नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिंगारिया, गर्भ अग्न मैं जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख अप्याओ बैठ कौ दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श लिहो तो नानक सीजै, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संघसै, जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संगरचना, ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काढ़ लेहो प्रभ आपे, आद्यंत।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राख नहारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्तर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कू मैं पतत बिकराल नानक काढ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कश करै।

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जे प्रसाद शति अमृत खाहे, तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिस कौ सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जे प्रसाद सुख से सुई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगे मान पावे, नानक पासे ती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमहे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरै साध सुन रस है। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तर है। साध कै संग लगे पर मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लगे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदे को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे महल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जप।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे है,

कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरसो सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पार्त्रे रूप

नाही इस हाथ, कर्ण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष पावे सोई फुंथियो। कबहू ऊंच नीच में बसे, कबहू सोग हर खरख, कबहू सोग हर खरंग हसे, कबहू निंद चंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावनहार, कबहू नृत्य करे बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होतरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहो पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू पला पला कहावे। ज्यो प्रभ राखे तिवही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधक मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्यो प्रभ पावे तिवे नचावे, ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कौ कर्मवंत कहावे, जन मरे बह जोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावे, धनवंता हुए कर गर्भावे, तृण समान का संग न जावे, बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगे परवान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै, आपस कौ जो पला कहावै, तसै पलाई निकट न आवै, सर्व की रेण जा का मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इस कौ सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज, नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसै प्राप्त होए, कर्ण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहां बीचा।

जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। बुझे देखे करे बबेक, आपे एक आपे अनेक। मरे ना बिरसै आवे ना जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेश है समझे आप, आपे रचिया सब के साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कश उसका ओह करने हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थनंतर एक कैसोए। अपने चल तो

जिस होवै सो परसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मन की तू प्रीत्याग, तिस्ते परै नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग।

करता कह राज मैं राज योग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी ते आए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देवहारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम ते आवै से ते गुण में जा को परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच उतिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करै करंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभ नासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिदकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मैं सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख समाए समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसै बजाय तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दै प्रवेश सत निरत बूझे जे कोए नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करना हार अवरना बुझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योत पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत अवनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जा कर दै विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपव होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पेना कहना जाई बूझे बूझन हर बबेक नारायण मिले नानकेक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक है मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर का सेवक जान है संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक प्रभ पालनहारा सेवक की राख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार है नानक सो सेवक सा सा सुमार है
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप्रतपा, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लखे, प्रभु के सेवकों को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी कीरी मैं कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लाख, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राख अवरना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिय, पी अमृत मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यो रह सो आए, जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानौ, तिसका गुण कै एक न जानौ, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर सियाणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुर वड भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबरिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ ਸੇਵ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਉ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਹੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ,
गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हम मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सज तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जाप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते पे, एक आराध प्राश्त गए, मन तने अंतर एक प्रभराता, गुरप्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जंत्र बताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनद निलविलाग, वडभागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नोसदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी, जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख है, गुर प्रसाद को बिरला लाख है, सो क्यों बिसरे जे बिखते काड है, जन्म जन्म का टूटा गंड है, गुरपुर तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयालो, भगत वचन सदा कृपालो, अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो, सर्व कटा करत प्रतपालो, आद पुरख कारण करतार, पग जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो है पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप, अष्टपदी जब अकारे हो कछ ना दृटेता, पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हर शोक कसै व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा, नान करने हार ना दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मोत कौ किस कौ गनी, जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए, जब आप है आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलते आप करन हार, नानक ठाकर अगम अपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन मरण कौ कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत या गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर या गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बादे, अपने आप ही चर जा, नानक अपने रूप आप ही उपर जा, जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, तै शरशिदर लगत कौ कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे, तै किस भूख कवन त्रिपतावै, करण करावन करण हार, नानक करते का नहि सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहां कूचीन, जब अपने आप उरतार है, तब सगन अब सगन कहां विचार है, जहे अपन ऊच अपने आप नेरा, तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गजानो आप, जय अशाला शेदा भेद।

तै कौन अचिंत किस लागै चिंता, जै अपने आप आपति यारा, तै कौन कथै कौन सुनै हारा, बहु बेअंत ऊचा नानक आपस को आपै पहुचा, जह आप रच

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

चिंता जाए मिटे अहंकार, ते जन को कोई ना पहुंचन हार। सिर उपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जा के अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल। अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे, अनकरंग नाना दृष्टा है। नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक ते जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कटकट व्याप रहा भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। बन तेन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दै दिशे समाहे। तिसते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससी अर सूर नक्षत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कब हूं डोले। सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुणे अमोल। सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुने सो बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे विस्थार, तिस भावै ता एकंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए। कवन निगट कवन कहिए दूर, आपे आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व पूतिया वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जाका तना, आपन जस आप ही सुना। आमन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सबकै मद अलिप्तो रह, जो कुछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाए। इस्ते होए सो नाही बुरा, ओरै कहो किने कश करा। आप भला करतूत अत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच। ता की गत मित कही ना जाए, दूसर होए ता सोजी पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक्यो जान। जो जाने ते सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का एह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जा

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजै सुन सुन अंध करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताँ की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविद करो विचार, पत उदाहरण पै हरण सुख सागर निरंकार। दाता भुगता देनहार, तिस बिन रहन ना जाए। दाता भुगता देनहार, तिस बिन अवर ना जाए। जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए। गोविंद जस गाइए हर नीत, मिल भजिए।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मन तन बसै तज काम प्रो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत कौ तुरिया पावै कोए नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभु सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचपू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मापूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हाथ, गुण दान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। श्लोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेशे को दृढ़ है, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुखी उजला नै पो है तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन भजया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदरै सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रभ अपना नानक तसैरवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावै कोए महला चौथा हम मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हम मैं मैल बिख उतर हर अमृत हर ओर धार सब कार्य तन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई गुरमुखा नो फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई सलोक महला चौथा विण नावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवे लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया सलोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मंतन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरनागति हर मेले गुरसाबास पौड़ी तू करता पुरख या गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वर्तदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़ी है तू करै सो सच्चे होए सी तां कायत कड़ी है सलोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगान जन नानक कृपा धार प्रभ सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत परम की ज्यो बोलन तवै सोहन नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत परन पौड़ी तू करता आपा पुल है पुलन विच नाही तू करै सो सच्चे भला है गुरशब्द बुझाही तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद ते आही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छडाही सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेश राय अखी तार लगन गुर तुठै सज्जन मिलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा
सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखै ब्रह्म एक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे, तिन विचों तिष्टिया ना कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएं दा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब के जानदा, जिदू किश कुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जे साहिब पावे तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी। जे कोई उस दी रीस करे, सो मूढ़िया जानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै, गुणिया खवखाणी। नानक सच्चा सच है, बो सच समाणी। सलोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निरवैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लथा हो मैं पार। जिन गुरमुख हरिया राधिया, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखण हार। धन धन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया, जिन जपया सृजनहार। महला चौथा। आपे धरती साजिया नु, आपे आकाश। विच आपे जन तो पाया नु, मुख आपे दे गिरास। सवे आपे आ वरदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ते आए तू, सब किलवे कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेण न आवै। तिन के मुख दर उजले, जिन हर हिरदय सच्चा भावै। कूड़ यार पिशाह सटियन, कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै। मोह काले कूड़ यारियां, कूड़ यार कूड़ो हो जावै। सलोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगह सच्ची पैन आए। एक ना अंदर खोट, नित खोट कमावै। ओहो जेहा बीजे, तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखै, सुआव गीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवै नित, तेहा पायन। ओए तेहो जेहे दईये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा। एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे घर वथ होवै साई खाए। बिन सतगुर सोझी ना पवै, हंकार ना विचों जाए। हंकारियां नो दुख भुख है, हथ तड़ै कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै, मुलम्मा पाज लै जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, ते सतगुर मिलै प्रभ आए। जो लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, जो पावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो वंदन हर हर नाम ते आवै। हर हर नाम रमत सो संजम, हर नामे ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावै। जो चित लाए पूजे गुरमूर्त, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार देवावै। फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै।
नरक घोर मोहे काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे, जा हर हर नाम ते आवे, हर बाता आख सुनाए नानक, हर करते ए वै पावे। महला चौथा, पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया, ओ गल फरोसी करे बहु तेरी, उसदा बोलिया किसे ना पाया, ओह कर कर हंडे जो रन दुहागण, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै, उसदा पास छड गुर पास बह जाया, जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आग सुनाए, पूरे गुर का बचन उपर आया, गुरसिखा वड्याई भावे गुरपुरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी, सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लै जे सतगुर टिके, सो सतगुर जे साहित्य आईंदा, सच सच्चा सतगुर एके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे, तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके, ओए बोले किसे ना भावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा, हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसाणी लाया, गुरमुख बख्श जमाईयान, मन मुखी मूल गवाया, सब को बीजे अपने भले नो, हर भावै सो खेत जमाया, गुरसिखी हर अमृत बीजया, हर अमृत नाम फले अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करतै मार कढ़ाया, किरसाणी जमी भाव कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम आराध्या, आप तरिया सब जग तराया। महला चौथा।

सिर जोरा अमर है, नित देवै भला जोरा दाख्या पुरख कमाम दे से अपवित अमेद खला। काम व्यापक शुद्ध नर से जोरा पुछ चला, सतगुर कै आख्या जो चलै सो सतपुरख पल भला। जोरा पुरख सब आप उपायन हर खेल सब खिला, सब तेरी बणत बणावनी नानक पल भला। पौड़ी तू वेहो तू वे प्रवाहो अथाहो है, अतुल क्यों तुलिया सेवड पागी जे तो त्याय दे जन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है सतगुर की रिसै होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है। ओ नांदर होर मुख होर है, बिख माया नो चख मर दे कड़ी है। श्लोक महला चौथा। सतगुर की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन, कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावै नाही, तिन्ना मोह भलेरे फिरै दईए गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से किचर कवे राइयन मन मुख बेताले। सतगुर नो मिलै सो अपना मन थाए रखै, ओह आप वरतै अपनी वथ नाले। जन नानक एक ना गुर मेल सुख देवै, एक आपे वख कड्डै ठगवाले। महला चौथा। जिन्ना अंदर नाम निधान हर, तिनके काज दईये आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंक।

ਪਿਆ। ਸਭ ਜਨ ਕੋ ਆਏ ਕਰੈ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾ ਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਦਾਨ ਦੀਆ ਹਰ ਨਿਚਲ, ਨਿਤ ਬਖਸੇ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੈ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਆਪਚਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਬੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਵਰਦਾਤਾ ਦਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋ ਦਿਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਗੜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਦਿਸ ਆਮਦਾ, ਸਭ ਚਲ ਨਹਾਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਹੋਰਤ ਚਿੱਤ ਲਾਇੰਦੇ, ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜਾ ਤਿਨ ਮਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਤ ਆਏ ਤੂੰ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਚ ਪਚ ਮੋਏ ਅਜਾਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸਤ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿੱਚੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਅਪਿਓ ਪੀਵੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਸਭ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸਨੋ ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪੌੜੀ ਜੋ ਤੁਦ ਸੱਚ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਥੋੜੇ, ਜੋ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਅਰਾਦ ਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕਰੋੜੇ, ਤੁਦਨੋ ਸਭ ਧਿਆਇਂਦੀ ਸੇ ਥਾਏ ਪਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜੇ, ਜੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਵੇਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨ ਦੇ, ਸੇ ਮੋਏ ਮਰ ਜੰਮੇ ਕੋੜੇ, ਓਏ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਵਿਸ ਕੱਢੈ ਮੁੱਖ ਕੋਲੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈਏ ਵਿਛੋੜੇ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖੇਦੋ ਲੜਾ, ਤਿਨ ਵੇ ਮੁੱਖ ਵੇ ਮੁੱਖੈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਗੂਹ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਆਇਆ, ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੋਵੇ ਮੁਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਥੇ ਪੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਦੁਹਾਵੇ ਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਵੇ ਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਉੱਠ ਕਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇ ਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋ ਬਹਿ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਵਾਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸੱਚ ਐ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਸਦਾ ਨਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜ ਖਾਏ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਕਰ ਵੱਥ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਨਫ਼ਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਵੀ ਚਾਰੈ ਸੰਤ ਜਨ, ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ, ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਦੇ ਬੋਲਦੇ, ਸੇ ਵਚਨ ਹੋ ਮੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ,
सब लोग सुनन दे सुख ना पायन मुग्ध नर संत नाल खन दे ओए लोचन ओना गुण नो ओए अहंकार सड़न दे ओए विचारे क्या करे जा भाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर पवंदे पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा अंतर हर गुरु ते आईंदा वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही एक तिल किसे दी कटाई। सच साहेब सतगुरु कै वल है ता चख चख मरे सब लोक आई निंदका के मोह काले करे हर करता है आप वधाई। ज्यों ज्यों निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई जन नानक हर यारा दया तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया नित्य पाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया क्या ओ खटे क्या ओ खावे जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैर नाल जे वैर रचाए सब पाप जगत का तिन सिर लया उस अगे पिछे टोई नाही जिस अंदर निंदा मोहे अंब पया जे सोयने नो ओह हथ पाए ता खेहू सेती रल गया जे गुर की सरनी फिर ओ आवे ता पिछले अवगुण बख्श लया जन नानक अंदर नाम ते आया हर सिमरत किल विख पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सबदू उपर तू दीबान जो तुद साहित आए दे सा सेवन सच्चे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिनी गुरमुख सालाहे आ सच शब्द निशान सच जे सच्चे सेव दे तिन वारी सद कुरबान। श्लोक महला चौथा तुर मारे पूरे सतगुरु से ही हुण सतगुर मारे जे मिलन नो बहु तेरा लोची है ना दे मिलन करतारे सत संगत टोई ना लहन वे संगत गुर विचारे कोई जाए मिले हुण ओ नानो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबै फिटके से फटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हथ ए ना विचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हरि उर धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूड़ तेन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा जिन को आप दे वड्याई जगत पी आपे आन तिन को पैरी पाए डरिए ता जे किश आप दूकी चै सब करता है अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिने अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टां के मोह काले कराए सतगुर की वड्याई निचड़ै सवाई हर कीर्त भगत नित आप कराए अंध नाम जपो गुरसिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो हर करता आप मोह कढ़ाए गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार शब्द कराए जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेवै सच वणंजलै
गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवै तिसदा कदे ना होवी भला, ओस दे आखे है कोई ना लगै नित उजाड़ी पुकारे खला। जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जै कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोकट न सकै उसदा काला भया। कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक हो सब सोजी पाई हर दर कियां बातां आग सुनाए। महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिलै तिन निंद का मोह फिके थुक थुक मोह पाई। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित भंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही। तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही। हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम आरा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई। तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे जिसके मस्तक हथ धरिया, गुर पूरे सो पूरा होई। गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठ के आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी, काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले। नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले। से उजड़ परम पवाई है ज्यो झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया। कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया। ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया। जैसा जैसा बीजै सो लुणै जिहा पुरब किने बोया, जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछै तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया, जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागियां सोहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर ज्योत प्रगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच ज्योत, गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड्डे खोत। सब आत्म राम पछाणिया ता एक रव्या एको योत पोत, एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिनके हृदय है
जिन हर वसिया मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए। जिन निरपौ नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे, हर उत्तम तिनि सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे, ओए आप तरे सब कुटुंब सियों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक कौ हर मेल जन

और उल्क झोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योत पावै सो करे कराया नानक वज

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा।

जेहे कर्म कमावदे ते वेहो भणियै, जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धणियै। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया, विच लब लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै, शब्द ना करै विचार। सुध मत करतै सब हिर लई, बोलन सब विकार, दितै कितै ना संतोखीऐ, अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली, जिन माया मोह।

कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा अब।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी, गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म

भिखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा की जय हार परे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगै नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तब की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदै स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं नेहो रहाओ। साहन सत करै जी अपने, सोर मैये को मिले न सुपने। तन मन धन गृहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया।

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचे ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जिह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोग।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो आनो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर।

राग गौड़ी ग्वारेरी अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुखिया गै आवै सो सुख हमो न मांगिया पावै बिखिया जो सुरत सुखयासा कैसे होई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते इस ब्रह्म डराना सो सुखमो साच कर जाना सन कादक नारद मुन सेखा तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा इस मन को कोई खोजो पाई तन छूटे मन कहां समाई गुरप्रसादी जय दियो नामा भगत कै प्रेम इन्हीं है जाना इस मन को नहीं आमन जाना जिसका परम गया तिन साच पिछाना इस मन को रूप ना रेखिया काई हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई इस मन का कोई जाने पेयो एह मन लीन पए सुख देओ जियो एक अर सगल शरीरा इस मन का रव रहे कबीरा गौड़ी ग्वारे री अहनिस एक नाम जो जागे केतक सिद्ध पए लिव लागे रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे एक नाम कल्प तर तारे जो हर हरे सो होहे नायाना कहे कबीर राम नाम पछाना गौड़ी पी सोरठ पी रे जीन लज लाज तोय नाही हर तज कतकाहू के जाही रहाओ जा को ठाकर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोही सो साहेब रहया परपूर।

कहे कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय वरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरख, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जा सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहूं कहल। छाड़ को चर्चा यान ना जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर नाम

मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल पी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा, तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए, अपन कया ना लेही। सर जियो काटै निर्जियो पूजै, अंतकाल का उपारी, राम नाम की गत नहीं जानी, पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजै डोलै, पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया, बिखिया सो लपटाना। गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माह।

वर प्रसाद अगल पहियवर है ना तरथा बेगन ना रहाओ। निवर दूर दूर फोन निवर जिन जैसा कर मान्या अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काय स्यों कही है ऐसा कोई बबेकी कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया तै उत्पत पर लो नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाज दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्ध दो तै नाही रात दिन सतै नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे पवन पूंजी परगासे ओ तृष्णा गूण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे ओ। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध दोय पहे जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान निबेर टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंचपदा पेवकड़े दिन चार है साहुरड़े जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना। कहो डडिया बांधे धन खड़ी पाहू कर आए मुकलाऊ आए रहाओ। ओहो जो ओहो जे दिसै खूड़ी कौन लाज बहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिर है देखो बिचारी एसनो क्यों आखी है क्या करे विचारी। पई निराशी

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहारो सदा अतीता एक ही है किसमाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बियोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगर पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन से अडाई। जो कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। लोग जानै एहो गीत है एहो तो ब्रह्म विचार। ज्यों का सी उपदेश होए मान समर्ति बार।

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवारे अंक सहयो शीश

कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरारे, छूटन हर की सेव गौड़ी। अग्न ना दह पवन नहीं मगन, तस्कर नेर न आवे। राम नाम तन कर संचौनी, सो तन कत ही ना जावे। हमरा तन माधव गोबिंद तरणी धर, एह सार तन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लही है रहाओ। इस तन कारण शिव सनकादक, खोजत पए उदासी। मन मुकांजे बा नारायण, परै न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी, तास सुमत मन लागा। जलत अंब थंब मन धावत, परम बंधन पौ भागा। कह कबीर मदन के माते, हृदय देख बिचारी। तुम कर लाख कोट अश्वहस्ती, हम कर एक मुरारी। गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की, लुप्त ना त्याग दयो। जो जो कर्म किए लालच स्यों, ते फिर ग्रह परयो। भगत बिन बिरथे जन्म गयो, साध संगत भगवान भजन बिनो। कही ना सच रहो रहाओ। ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत, कने ना कराओ लयो। तैसे प्रमता नेक जोन मैं, फिर काल हयो। या तन जोबन अरसत दारा, पेखन कहो जो दयो। तिन्ही माहे अटक जो उर्जे, इंद्री प्रेर लयो। औद अनल तन तिन को मंदर, चौदे ठाठ ठयो। कह कबीर पै सागर तरन कहो, मैं सदगुर ओट लयो। गौड़ी पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। मैं नाही कश आहे ना मोरा, तन तन सब रस गोबिंद तोरा रहाओ। इस माटी मैं पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिर मैं बिन सजाए हंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ। जात पावै ता हुक्म नावै, इस बेड़े को पार लंगावै। गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पज सारिंग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नामी जोन छाड़, जो जग में आयो। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ। गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता। लख चौ राशि जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी। गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछी है, डरिए ना नरक निवास। होना है सो होई है, मने ना की जय आस। रमैया गुण गाई है, जाते पाइये परम निधान रहाओ। क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान। जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए। जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार। सेवक सो सेवा भले, जेहकट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, तै सोए संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ। और मुए क्या रोई है, जो आपा

जह की उपजी तह रची पीवत मर्दन लागो, कह कबीर चित चित आ राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारे कमनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पगना खिसै हर दर्शन की आसा। उडहो ना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारण हर की पद करी जय, एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारहवीं आस पास कंत तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे ओवा का स्वरूप देख मोही गुआरन, मोको छोट ना आओ ना जाऊ रे। तोहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड भागो रहाओ। बिंद्रा बान मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे। जाका ठाकर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी बारहवीं गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बिपल बस्तर केते है पहरे, क्या बन मद्दे बासा, कहां पया नर देव।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एह जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा गौड़ी बारवीं मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सनमुख रंते डरप सती के साचे पांडे डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम करका जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा कै माई ना बापोरे। गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन कौ खरी प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। हृदय शुद्ध

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, एक है देखत मन पति आही। जब बुध होती तब बल कैसा, अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ले मेरी, बुध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मैं रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास उजारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

जहां बोल तय अक्षर आवा, जह बोल तय मन न रहावा, बोल बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है ना कोई, अल लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, भटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अल लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदेओ, पायो अपंग छेद, तुरक तरीकत जानी है, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान, ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा, खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न तरी काना, रह बेहंगम कत ना जाई, अगे गह गह गगन रहाई, कग्गा काट काट निवसै सोई, काट फूटे काट कवे ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा, गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र अह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा अह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा, रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रहै, तब जाए जोत उजारो लहै, चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा, नन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढे आओ, नेरा पायो ताहे, टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देखया टल टल कत ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर या समाई, जाओ डर डर ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे, टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

मम्मा मूल गया मन मान मरमी हुए सो मन को जान मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे मम्मा मन स्यों काज है मन सादे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कह कबीरा मनसा मिलिया ना कोए एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो एहो मन ले जाओ उन मन रहे तो तीन लोक की बात कह यैया जाओ जान तो दुर्मत हानो कर बस काया गाओ रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा लल्ला ऐसे ले मल्लावे अंत ना जाए परम सच पावे आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार बल बल जे बिसन तना जस गावे विसन मिले सब ही सच पावे।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा, ससा सो सहसे सवारे, सोई सही संदे निवारे, अल्प सुख शाड़

तबे मनमाना है तो सही लखे जो कोई तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बद होई कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी थित्ती कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थित्ती सात वार कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ आपे करता आपे दे ओ। थित्ती अमावस में आस निवारो अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार अनपो शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै आनंद मूल परम पद पावे। साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास।

पुन्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ। आदित करै भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज महवाए। सोमवार सस्य अमृत चरै चाखत बेख सगल बिख हरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत वारो पीवनहार। मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसहराए। बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतर है उर्द पंक लय सुदा करे बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वह नाहे। सुकृत सहारे सो एह व्रत चढ़े अनदिन आप स्यों लड़े सुरखी पांचो राखे सबै तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे। थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कट में जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास। जब लग कट में दूजी आन तौ तो लो महल न लाबे जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग। राग गौड़ी चेती बाणी नाम देव जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारी अले राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याद अजा मल तारी अले चरण बदक जन ते मुक्त भये हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा

मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई रहाओ। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सोवाही। आबा दान सदा मशहूर, उहां गनी बसे मामूर। त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावे, महरम महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास चुमारा,

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रम फास, प्रेम

गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे। गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे। गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जो जुग बेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले। गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा साहेब।

आए तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी काली नथ क्या वड्डा भया किस तू पुरख जोरू कौन कही है सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंतरा पायो ताका कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई अमृत पीवै सोई रहाओ जिन पिया से मस्त भय है टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी भीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल पवन तेरी माया रारे रूप निरालम बैठा नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्दा नहद सो सौ राता नानक कह विचारा। आसा महला पहला मैं गुण गल्ला के सिर पार गली गल्ला सृजनहार खाना पीना हसना बाद जब लग हृदय न आवे याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस ली जी ली जय रहाओ। मन की मत मता गल मता जो किश बोली है सब खतो खता क्या मोहल कीचे अरदास पाप उन्दो साखी पास जैसा तू करे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जेही तू मत देहे पे ही को पावे तुझे आपे पावे तवे चलावे राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते कहो धन माल जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया तामिल सखिया काज रचाया खेल देख मन आनंद पया शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा जा सह मिलिया ता जानिया तेहो लोका मैं शब्द रविया है आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे होरन कार्ज ना होई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई। भणत नानक सब ना का परे को सोए जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला गृह बन समसर सहि सुभाए दुर्मत गत पै कीर्त ठाए सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ मन चूरे खड़ दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै दुख बिख्या सुख तन पर हरै काम क्रोध अंतर तन हिरै दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोबिंद आपे करे आपे बख्शिंद तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे पेख वर्ण दिसे सब खेहे जो पजैसो आवे जाए नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला एको सरवर कमल अनूप सदा बिगासे परमल रूप उजल मोती चुगै हंस सर्व कला जग दिसे अंस। जो दिसै सो उपजै बिनसै बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद साखा तीन कह नित बेद नाद बिंद की सुरत समाए सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਪਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਮਿਟੈ ਸੱਚ ਨਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵ

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिउ राती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत पाओ नानक बख्से पूछना होए दूजा मेटै एको सोए आसा महला पहला एक आवै एक जावै आई एक हर राते रह समाई एक धरन गगन में ठावर ना पावै से कर्महीन हर नाम ना त्यावै गुर पूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिखवत अत भौ जल गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ जिनको आप लय प्रमेल तिनको काल न सकै पेल गुरमुख निर्मल रहै प्यारे ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे बुरा भला कहो किसनो कहियै दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहियै अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद अठसठ मज्जन हर रस रेद गुरमुख निर्मल मैल ना लागै नानक हिरदै नाम वड्डे तुर भागै आसा महला पहला निम निम पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हिरदै हर रविया हिरदै देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभै मिटै ज्ञान होए उजियारा रहाओ रवनी रवै बंधन नहीं टूटै विच हमै भरम ना जाई सतगुर मिलै ता हमै टूटै ता को लिखै पाई हर हर नाम भगत प्रिया प्रीतम सुख सागर ओर धारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यों जूझ मरै प्रपाए मनसा मनै समाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किसको कह सुनावै किसको किस समझावै समझ रहे किसे पढ़ावै पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पज मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ अनत तरंग भगत हर रंगा अंधन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म सख्त संसारा राम पगजन रहे निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया आद अपा

सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीख को भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वाफल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन हो

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुसपाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विणना में होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागे, पाहरू राशब चोर ना लागे, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द।

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिल ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना यवर कोई, जो तू राखे तिवी रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरु

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलख अपार, हम पापी तू बख्शन हार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरन पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलया भगत।

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठरा

हर के नाम बिना जग धंधा, जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा राओ। लख खटिए लख संजिए खाजै, लख आवे लख जाहे, जा पत लेखे ना पवे तां जी किथे फिर पाहे। लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण, जा पत लेखे ना पवे तां सबे को प्रमाण। सच नाम पाची उपजै कर्म नाम करतार, अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार। आसा महला पहला, दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया, चूका जम स्यो मेल। लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एक ठे, एक रतीले पाहे रहाओ। पिंड पतल मेरी केसो किरिया, सच नाम करतार, एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी, नावे आत्म राओ, सच्चा नामन तांथी है जायनस लागे पाओ। एक लोकी होर शमशरी, ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सुना है। आसा कर चौथा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए, जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पे। तौ कारण साहेबा रंग रते, तेरे नामा नेका रूपानंता, कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती घोड़े, छोड़ वे लायत देश गए, पीर पे कांबर सालक साधक, छोड़ी दुनिया थाए पे। सात सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर शेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद भावे नानक ता को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई जे को दरगह बहुता बोले नौ पवै बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवै सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रैरा सहमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जां को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, क्यामत शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करे क्या, सिफती रत्ता सद बैरागी, जुवे जन्म ना हारे, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धारे, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोसना देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तैकी दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोसना होई रहा हो, सकता सीहो मारे पैवगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मर मर जीवै ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगम्या पारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कहो गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सांस शरीर, गुरमुख ता कहो लगे ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नान गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुवा विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तलना तुमाए, निरपव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए, गुण संग्रहो विचों अवगुण जाहे, पूरे गुर कै शब्द समाहे रहाओ, गुणा का गाहक होवै सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम वखाणे, साची बाणी सूचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण्या मोलक पाए ना जाहे, मन निर्मल साचा शब्द समाहे, सेवड भागी जिन नाम ते आया, सदा गुण दाता मन वसाया, जो

जाए। ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा घर दूजा महला चौथा किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई हमारा तड़ा हर रया समाई हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई हौ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे झूठ तड़े कर पछोताहे थिर ना रहे मन खोट कमाहे हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है एह सब तड़े माया मोह पसारी माया कौलू जय गावारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनों कृपा करे तिस सतसंग मिलाए हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावै प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै जैसा बीजै तैसा खावै जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै आसा महला चौथा हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया गुरबाणी हर लख लखाया गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना एको रव रहया कट अंतर मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ मैं मंतन प्रेम महा बैराग सतगुर पुरख पाया वड भाग दूजे पाए पवै बिख माया भागहीन नहीं सतगुर पाया अमृत हर रस हर आप पियाया गुरपुरे नानक हर पाया आसा महला चौथा मेरा मन तन प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुखसार नाम जपो मेरे साजन सहना।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में।

हर हर राए, नाम तेरा जब जीवै नानक, ओत पोत मेरा संग सहाए। आसा महला पंजवा, अरड़ावै बिललावै निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै, नाले लै सदावै, अनहोंदा अजगर भार उठाए, निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै, सो नानक आख सुनावै। भगत जना का उसका आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावै। आसा महला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिंगारा, तौ पी मेरा मन ना पतियारा। अनक सुगंधत तन मैं लावो, ओह सुख दिल समान नहीं पावो। मन मैं चितवो ऐसी आसाई, प्रे देखत जीवो मेरी माई। माई कहां करो यो मन ना धीरे, प्रे प्रीतम बैराग हिरै रहाओ। वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है, ओए पी जानो कितै ना लेख है। पत सोभा अरमान महतो, आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभावा ता सदा निहाल। बिंजन भोजन अनक प्रकार, रंग तमासे बहुत विस्तार। राज मिलख अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस। बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै, मिले प्रभु ता सब सुख पावै। खोजत खोजत सुनी एह सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया, पूरी आसा मंत्र बताया। प्रभ मिल

सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ अत सूची तेरी पाक साल कर इशनान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान सब बिद खोई लोभ सुवान कापर पहरै पुगै भोग आचार करै शोभा मै लोग चोवा चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जो

जो तू करै सोई प्रवाण, साचे साहिब तेरा सच फुरमाण। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरै कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवां, निकट जी कै सदही संगा, कुदरत वरतै रूप अरंगा। करै ना चुरै ना मन रोमन हारा, अवनासी अवगात्या गोचर। सदा सलामत।

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यो लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया। पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ। नाम निधान।

अग्न सागर विकराला, नानके सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला। आसा महला पंजवा, हर जन लीने प्रभु छड़ाए, प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या, ताप मुआ बिख खाए रहाओ। पाला ताऊ कछु ना व्यापै, राम नाम गुण गाए, डाकी कोचत कछु ना लागे, चरण कमल सरनाए। संत प्रसाद पय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औखद खायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ। ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पयासा मिटे विसूरे रहाओ। जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेलायाई, बिन हुक्मे क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा पाई। रहाओ नानक दास सा सरनाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सास संगत हर चरण निवास। राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावै, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जा के पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म। दूजे करके चौतीस, आसा महला पंजवा। जा का हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ। कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली। साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे। जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरे लेखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रह मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे। सब मद्दे रव्या मेरा ठाकर, दान देव सब जी सुमारे। एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे। जप जप होए सगल साथ जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे। गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार। क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझै मजार। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगम अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरेता नाम आधार। आनंद करे साथ साथ सुमारे, ना पोहै अगनार। पर तन पर दारा पर निंदा, इन स्यो प्रीत निवार। चरण कमल सेवी दे अंतर, गुरपूरे कै आधार। गृह मंदिर महला जो दिसै, ना कोई संगार।

हर आज मिलक जोबन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको वंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, और आगे आसा कर शेवा महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया, जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता, परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया, आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ, किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा, निंदक की गत कत हू नाही, खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतां टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई, आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए, गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्रन को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने, उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एक अंकारे, तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ, प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुक्ते सगल सुनावै, कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरु आगै, सत पदार्थ पावै, जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे,
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਦਮ ਚੰਡਾਲੀ ਪਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਸੂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਈ ਰੇ, ਪਾਤਾ ਲਿਆ ਕਾਸੀ ਸਖਨੀ, ਲਹਿਬਰ ਬੂਜੀ ਖਾਈ ਰੇ, ਘਰ ਕੀ ਬਿਲਾਈ ਅਵਰ ਸਿਖਾਈ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਡਰਾਈ ਰੇ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਕੇ ਹਰ, ਕੂਕਰ ਤਨੈ ਲਗਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਾਜ ਥੂਨਿਆ ਛਪਰਾ ਥਾਮਿਆ, ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਰੇ, ਬਿਨ ਜੜੀਏ ਲੈ ਜੜਿਓ ਜੜਾਵਾ, ਥੇਵਾ ਅਚਲ ਜਲਾਇਆ ਰੇ, ਦਾਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰਾ, ਚੂਪੀ ਨਿਰਨੋ ਪਾਇਆ ਰੇ, ਮਾਲ ਦੁਲੀਚੈ ਬੈਠੀ ਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਨੈਣ ਦੇ ਖਾਲ ਧਾਇਆ ਰੇ, ਸੋਈ ਅਜਾਣ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਾਨਾ, ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਨਾ ਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅਮਿਓ ਪੀ ਆਇਆ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਬਿਗਸਾਨਾ ਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਬਿਸਾਰੇ ਔਗਣ, ਅਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਰਿਆ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਤ ਪਿਤ ਨਿਆਈ, ਬਾਰਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਿਆ, ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖੇ ਗੁਰਗੋਪਾਲ, ਕਾਢ ਲੀਏ ਮਹਾ ਭਵਜਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਓ। ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਮ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਐ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਹ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਈ ਐ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਹ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਾਠੇ, ਛਿਜੈ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਛ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆਪੈ, ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਗਾਠੇ, ਅੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭੈ ਸਹਾਈ, ਏਤੋ ਤਰਖ ਨਹਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਮੀਤ ਹੀ ਧਨ ਮੇਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਬਲਿਹਾਰੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਉ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿੱਸਾ ਲਾਹੀ, ਏਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ

सब जग बौराया ना मिले सुख पाई है। क्या कही है किस आग सुनाई है, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वडे आई ता तेरी वडे आई, ए त्यो तुझे ते आओ, नानक प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर वचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आगे ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ़ लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रखै, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को भख है। ओहो सुख ओहा वडियाई, जो प्रभ जी मन पाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिलै रंगमाणी। तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साह संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया। गुर प्रसाद पहे जन्म मुक्ते, हर हर नाम आराध्या, राख लिए प्रभ राखन हारे, जो प्रभ अपने पाणे, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणी।

हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवाण नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पूर खजाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइया, एहो अस्थान गुरु ते पाई है, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चितयावै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान, गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरा मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धार है, जन्म मरण का दुख निवार है, हृदय संभाल मुख हर हर बोले, सोजन इत उत कत न डोले, कहो नानक जो राचे नाए, हर माला ता कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करे सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवां, भूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंगरसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिने अवर ना जानै। कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्स सफल जां की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवां, सगल सुख जप एक है नाम। सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग। जिस पेड़ लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद ओए आनंद पावे। जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे। रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवां, आठ पहर उदके सुनानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही। बहर बहर तिस लागै पाई, साल ग्राम हमारे।

सदा बैकुंठ जहां का चवर सब ऊपर झूले ताँ का धूप सदा पर फुले काट काट संपट है रे जा का अपग सभा संग है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लहना संत चरण ओ आयो सरना हाथ चढ़ो हर साल गिराम कहो नानक गुर की नोदान आसा महला पंजवा पंचपदा जे पेंड लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बिथी जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती काट दूर रही ओ जनते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लेखा भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा कौ नानक जे सतगुर पूरा वाजे ता कै अरहद तूरा आसा महला पंजवा दो पदा साधु संग सिखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसै अगाने जब जब जीवा सारंग पाने करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवेहर भरे भंडार तोट ना आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित त्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मनै आधार चरण कमल गुरदेव प्यारे पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जा कै मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ता का थिर सोहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या पिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सोहागन सिंगार करी मन मेरे की तपत हरी भलो पयो प्रे कहया मानिया सुख सहज इस कर का जानिया रहाओ हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचै मनमुख मूह राखा गुरु नानक बहा पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहा उहा कामना प्राणी। संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया। सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया। जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान। आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे। जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह बहु ना जावे। सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे। जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूट नाही भली भांत सब सह समाही। जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई ऐसा चा सोई। सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण। ओट गही निरपो पद पाई है सास सास सो गुणित गई है। दूर ना होई कतहु जाई है नजर करे ता हर हर पाई है। अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास। आसा महला पंजवा प्रथमे मिटे।

मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए। अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुर अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर।

बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा नानक का पातशाह दिसै जाहरा।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया से मरण में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम धन गुण गाओ लाभ पूरा गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कहो तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिया थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मै नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिय एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिशायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जो मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दुखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लाग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगनो तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभ पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगै पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाउ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध, कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सतपुरख की, सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा, अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी, नाम दान गुरपुरे दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विश्वास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे न्योर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवा महला पंजवा। जिसनो तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा। पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री, सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करे है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने। दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाले लेखे बैसे, लेखे लेंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवा, अपुष्ट बाते पई सिजरी। दूत दुष्ट सजनई, अंधकार मैरतन प्रगासियो। मलीन बुद्ध हशनई, जो कृपा गोबिंद पई। सुख संपत हर नाम फल पाए, सतगुर मिलई रहाओ। मोहे कृपन को कोय ना जानत, सगल पवन प्रगटई। संग बैठनो कही ना पावत, हुन सगल चरण सेवई। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते, मन सगल त्रिसन बुझ गई। एक बोल पी खबतो नाही, साध संगत सीत लई। एक जीही गुण कमन मखाने, अगम अगम अगमई। दास दास दास को करियो, जन नानक हर शरणई।

खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक हो जाना रे सिमरत नाम निधान निर्मोलक मन माणक पतियाना रे। आसा महला पंजवां दो पदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मंत्र पताना बहुर नकत हूं तावो रे। हमरा ठाकर सब ते ऊंचा रहन दिन सो तिस गावो रे खिन मैं थापो थापन हारा तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरै चीत ना पावो रे नानक दास प्रभया पहराया प्रंपो मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा चार बरन चौहा के मर्दनो खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शली रे। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे। रहाओ वड़ी कौम वस भागै नाही मोहकम फौजा ठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे। आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे। रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लायकी रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे। आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख ना मन ते टारी रे। रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। आसा महला पंजवा नीकी सा संगानी रहाओ पहर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद बखानी चालत बैस्त सोबत हर जस मंतन चरण खटानी। हौ हौ रो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। त्याग सगल सियान पा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे नाम बाजो सगल दिसै शार। सो प्रभु जानिए सद संग गुर प्रसादी बुझिए एक हर कै रंग। रहाओ सरन समरथ एक केरी दूजा नाही ठाओ महापौजल लंगिए सदा हर गुण गाओ। जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए। एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिने अवर ना होर। आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता शरण रखन जोग। मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संगे एक स्यों लिवलाओ। रहाओ वेद शास्त्र जन त्यावे तरण कौ संसार कर्म धर्म अनेक किरिया सभी ऊपर नाम आचार। काम क्रोध अहंकार बिनसै मिले सतगुर देव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभ की सेव। चरण सरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानक का प्रभतान। आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोबिंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत। सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत। रहाओ करण कारण समर्थ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियान पा आठ पहर प्रभ जाप। मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कमल बसाए हृदय जी को आधार। कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म
गुण तेरा जस गाओ, सर्व सुख बड़ी वड़ियाई जप जीवै नानक नाओ। आसा महला पंजवा, उद्यम करो करावो ठाकरो, पेखत साधु संग हर हर नाम चिरावो रंगन, आपे ही प्रभरंग मन में राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहाओ। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ पेखन का चाओ, दया करो किरमे अपने को, यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभ मेरा, हमरे वस किश ना है, ज्यों ज्यों राखै त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाए। जन्म जन्म के किलविख काटै, मज्जन हर जन तूर, पाए भगत परम पव नासै, हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा, अगमै गोचर दर्श तेरा, सो पाए जिस मस्तक भाग, आप किरपाल किरपा प्रभ धारी, सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव, मल मूत मूड जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट तरता, सब मैरिया समाए, धर्म राजा बिस्माद होवा, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर पणिया, कल युग ऊतमो जुगा माहे, अह कर करे सो वह कर पाए, कोई ना पकड़िया किसै थाए। हर जियो सोई करे जे भगत तेरे जाचे, एहो तेरा बिरद कर जोड़ नानक दान मांगे, अपने संता देह हर दर्श। राग आसा महला पंजवा, कर तेरवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे रहाओ। महा बिखादी दुष्ट अपवादी, ते पुनी संगारे, नरक पवंते नरक पड़ंते, तिनके कोले उदारे, कोय न जाने कोय न माने, से प्रगट हर द्वारे, कवन उपमा देव कवन वडाई, नानक खिन खिन वारे। आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे रहाओ, मोह कुटंब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे। कर कृपा राखे सतसंगे, नानक शरण आहे, आसा महला पंजवा ते पदे, ओहा प्रेम पिरी रहाओ। कनक माणक गज मोतियन लालन, नै ना नहीं राजन भागन, हुक्म ना साधन, किश किश ना चाही, चरणन शरणन संतन बंदन, सुखो सुख पाही, नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री। आसा महला पंजवा, गुरै दिखायो लोए ना रहाओ, इतै उतै कट कट कट कट, तू ही मोहेना, कारण करना तारण तरना, एकै एकै सोहेना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोए ना। आसा महला पंजवा, हर हर नाम या मोला, ओहो सह सोहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओहो अगे अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक एहो हर का चोला। आसा महला पंजवा, अपनी भगत निबाहे, ठाकर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकारथ, हृदय चरण बसाहे, एह मुक्ता एह जुगता, राखो संत सगाहे, नाम ते आवाओ सह समावाओ, नानक हर गुण गाहे। आसा महला पंजवा, ठाकर चरण सुभावे, हर संतन पावे रहाओ, आप गवाया सेवक माया, गुण रस रस गावे, एक आसा दर्श प्यासा, आना पावे,
ਦਇਆ ਤੁਹਾਰੀ ਕਿਆ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਨਾਮ ਧਿਆਓ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਆਈਐ ਸਰ ਫਲ ਪਾਈਐ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੀ। ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸੋ ਮੂਵਾ ਰਹਾਓ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸਰਵ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸੋ ਜਨ ਸੁਖੀਆ ਹੂਆ ਰਾਜ ਕਹਾਵੈ, ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਾਂਧਿਓ ਨਲਨੀ ਪਰਮ ਸੂਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਚਲਥੀਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਚੌਦਵਾਂ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਨਿਹੋ ਨਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਲੀਜੈ ਹੋ ਮਨ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਹੋ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਤੁਮ ਬਿਨ ਧੀਰਜ ਕੋ ਨਾ ਕਰੈ ਰਹਾਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਦਰਸ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਕਰ ਥਾਕੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਵਸੈ।

गुण गोविंद गावो, अंत दिनो प्रभु आवो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निज नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवां। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल दी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ताबो पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां, आसावरी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिया गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अन प्राण हां, रहो सर्व थान हां, लयो जम भयान हां, पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान, लैनो जिसम थान हां, पै पावक पार प्राण हां, निज कर तिसै थान हां, हर रस रसै मान हां, लाथी तिस पुखान हां, नानक सह समायो रे मना। आसावरी महला पंजवां। हर हर हर गुनीहा, जपिया सह तुनिहा, साधु रसन पनीहा, छूटन बिद सुनीहा, पाइय वडपुनी मेरे मना। रहाओ खोजे जन मुनिहा, सर्व का प्रभ तनिहा, दुलभ कल दुनिहा, दुख बिनासनी हा, प्रपूर्ण आसनी मेरे मना। मन सो सेवी है हां, अलख अपेवी है हां, ता स्यों प्रीत कर हां, बिनस ना जाए मर हां, गुरते जान हां, नानक मन मान्या मेरे मना। आसावरी महला पंजवां। एका ओट गहो हां, गुर का शब्द कहो हां, आज्ञा सत सहो हां, मने निदान लहो हां, सुख समाइय मेरे मना। रहाओ जीवत जो मरे हां, दुत्तर सो तरे हां, सब की रेन होए हां, निरपो कहो सोए हां, मिटे अंदेसिया हां, संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां, तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रपाया मेरे मना। आसावरी महला पंजवां। मिल हर जस गाइये हां, परम पद पाइये हां, वा रस जो बिदे हां, ताको सगर सिद्धे हां, अन दिन जागया हां, नानक वट भागया मेरे मना। रहाओ संत पग धोइए हां, दुरमत खोइए हां, दस ऐरेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगता शरण पर हां, जन्म ना कदे मर हां, अस्त्र से पए हां, हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां, नाम दृढ़ाए मूह हां, तिस बिन नाहे कोए हां, मने अराध सोए हां, निमख ना विसर हां, तिस बिन क्यों सर हां, गुर को कुर्बान जाओ हां, नानक जपे नाओ मेरे मना। आसावरी महला पंजवां। कारण करन तू हां, अवर न सुजै मूह हां, करै सो होइए हां, सह सुख सोइए हां,
धीरज मन पए हां, प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ। साधु संग में हां, पूर्ण संज में हां, जब ते छुटे आप हां, तब ते मिटे ताप हां, कृपा धारिया हां, पत रख बनवारिया मेरे मना, एहो सुख जानिया हां, हर करे सो मानिया हां, मंदा नाहे कोय हां, संत की रेन होए हां, आपे जिस रखे हां, हर अमृत सो चखे मेरे मना, जिसका नाहे कोय हां, तिसका प्रभु सोए हां, अंतर्गत बुझे हां, सबके सब के सब तिस सुझे हां, पतत उधार लेहो हां, नानक अरदास एहो मेरे मना, आसावरी महला पंजवा एक तुका, ओए परदेसिया हां, सुनत संदेसिया हां रहाओ, जां स्यों रच रहे हां, सब कौ तज गए हां, सुपना ज्यों पए हां, हर नाम जिन लए, हर तज अन लगे हां, जन्म मर भगे हां, हर हर जन लहे हां, जीवत से रहे हां, जिसे कृपाल होए हां, नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा, बिरथा कहो कौन से मन की, लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की रहाओ, सुख कह हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की द्वारे द्वार, स्वान ज्यो डोलत नै सुधराम भजन की, मानस जन्म्या कार्थ खोवत, लाजना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कुमत बिना सह तन की, राग आसा महला पहला, अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर अवघट सरवरन आवै, बके न बोले हर गुण गावै, जल आकाशी सुन समावै, रस सत झोल महारस पावै, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धार सब ठौरे रहाओ, सच ब्रत नेम ना काल संतावै, सतगुर शब्द करो जलावै, गगन निवास समाद लगावै, पारस परस परम पद पावै, सच मन कारण तत् बिलोवै, सुबर सरमर मैलन धोवै, जै स्यों राता तै सो होवै, आपे करता करे सो होवै, गुर हिव शीतल अग्न बुझावै, सेवा सुरत पूज चढ़ावै, दर्शन आप सहज कर आवै, निर्मल बाणी नाद बजावै, ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा, तीर्थ मज्जन गुर विचारा, अंतर पूजा थान मोरारा, ज्योति ज्योत मिलावन हारा, रस रसिया मते कै पाए, तख्त निवासी पंच समाए, कार कमाई खसमर जाए, अवगत नाथ ना लिखिया जाए, जल मैं उपजै जल ते दूर, जल मैं ज्योतरिया भरपूर, किस नेड़े किस आखा दूर, नित गुण गावा देखा दूर, अंतर बाहर अवरना को, ज्योतिष पावै सोफन होए, सुन पारथर नानक कह बिचार, निर्मल नाम मेरा आधार, आसा महला पहला, सब जप सब तप सब जतराई, उजड़ पर मैं राहे ना पाई, बिन बूझे को थाए ना पाई, नाम बिहुने माथे शाई, साच धनी जग आए बिनासा, छूट प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मोहे बांधा बहुती आसा, गुरमति एक पय उदासा, अंतर नाम कमल परगासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रे जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुर सेवे करनी सारी, बारह मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए, माया मोह गुर सब जलाए, निर्मल नाम सद हृदय त्याए, तावतरा खै ठाक रहाए, सिख संगत कर मिलाए, गुरबिन पूलो आवै जाए, नदर करे संजोग मिलाए,
रूड़ो कहो ना कहया जाई, या कथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुखर जाई, सब दुख मेटे साचै नाई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै तां सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला। नदर करे राखे रखवाला, त्रिभवन सूजै आप गवावै, बाणी बुझै सच समावै, शब्द विचारे एक लिवतारा। नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला। लेख असंख लिख लिख मान, मन मान्या ऐसा सुरत वखान। कथनी बदनी पट पट पार, लेखा संखा लेखा पार। ऐसा साचा तू एको जान, जमन मरना हुक्म पछाण। रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल, बंदा छूटै नाम समाल। गुर सुख दाता अवर ना पाल, हालत पालत निभी तुद नाल। शब्द मरै ता एक लिवलाए, अचर चरै ता परम चुकाए। जीवन मुक्त मन ना मसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थापो थाप। सर्व निरंतर आपे आप, किसे ना पूछै पूछै बख्से आप। तू पुर सागर माणक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर। सुख मान पेटै गुरपीर, एको साहेब एक वजीर। जग बंदी मुक्ते हो मारी, जग्या नीवर लाया चारी। जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरै हंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजै बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझै सोए। महंगो मोल पारिया फार, अटल छल गुरमती धार। पाए मिलै पावे पैकार, नानक नीच कह बिचार। आसा महला पहला, एक मरै पंचे मिलर होवै। हमें जाए शब्द मल धोवै, समझ सूझ सहज कर होवै। बिन पूजे सगली पत खोवै, कौन मरै कौन रोवै। ओही करण कारण सब सह सिर तो ही रहाओ। मुए कौ रोवै दुख कोए, सो रोवै जिस बेदन होए। जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सोए। जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना। हम बलिहारी सदगुरु चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना। निरपो आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जग शोत। दुरमत बिन सै क्या कह रोत, जन मुवे बिन पग सरोत। मुवे कहो सच रोवे मीत, त्रैगुण रोवे नीता नीत। दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पौ कृष्ण प्रीत। पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख। बिन पै भक्ति जन्म बिरंथ, हर गुण गावै मिल परमारंथ। आप मरै मारे पी आप, आपो पाए थापो थाप। सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात। सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए। नानक सूतक जन्म मरी जय, गुर प्रसादी हर रस पी जय। राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा। एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुरमानै मनते मन तीरा। ऐसा सहो सराफी करै, साची नगर एक लिवतरै। रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार। सिमत सहज कर गुर करतार, आसा मनसा शब्द जलाए। राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए। कंचन काया ज्योता नूप, त्रिपवन देवा सगर स्वरूप। मैं सोतन पल्ले साचा खूट, पंच तीन नव चार समावै। तारण गगन कल तार रहावै, बाहर जा तो उल्ट परावै। मूर्ख होए ना आखी सूजै, जेवा रस नहीं कया बूजै। बेका माता जग सों लूजै, उत्तम संगति उत्तम होवै। गुण कौता वै अवगुण धोवै, बिन गुर सेवे सहज ना होवै। हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल। नानक परखै नदर निहाल, आसा महला पहला।
ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲੀ ਮੈਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਐਹ ਨਿਸ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਸੁਥਾਨ, ਤਿਨ ਪਵਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਸਾਚਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਤੇ ਸੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਾਰਸ ਭੋਗ, ਪੰਚ ਸਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਭ ਲੋਗ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਟਾਹੇ ਉਸਾਰੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਵਰਤੈ ਜੋਤਿਸ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਦ ਨਾ ਸੁਰਤ ਪੁਰਾਨ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਬੁੱਢੈ ਅਭਮਾਨ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਕਿਆ ਲੈ ਸਨਿਦਾਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਗਲ ਫਾਹੀ ਬੌਰਾ ਬੌਰਾਨਾ, ਬੂੜਤ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਤਉ ਡਰ ਭਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇਵਟ ਭਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोइत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साज पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मै आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले तै जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुख आगे। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर बीचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लै घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हमें कौरा रहाओ। एहो मन मुग्ध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिलै काल कंटक मारे सच पेलै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा सागत लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपतापै गुरमुख चीने हर प्रभ आपै। मन बैरागी हो मैं त्यागी कटकट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै दर कर महली हर पत राखै। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दास संदासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। तनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शै नाम जपाए दूत ना लाग सकै गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला ज्यो भावे त्यो रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख विण गुर शब्द जन्म के लेख देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भर पुर तार रहे मन माही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटे गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पै हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सत शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोतो कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हो मैं डन सहे राजा मंगे दान। बंधन सौदा अन विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेदबाद हंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां कर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवे धूड़। महलां अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास। उपरों पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़ियां। गरी शोहारे खांदियां, मन से जड़ियां। तिन गल सिलका पाईया, तुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिले सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमा सह चाहे। बाब रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते ओ, हुण कहन ना मिले खुदाए। एक घर आवे अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। इक ना एहो लिखिया, बैबै रोवे दुख। जो तिस पावे सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गाढ़ेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मोबंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। एक कड़ी मैं थापो थापे, जरवण देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मेला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी मगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तो

ओहो ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागा ए सोई, जे कर बुझै अपना ता नींद ना होई। जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, ता तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो, मत पछो तावो। औगुण छोड़ो गुण करहो, ऐसे तत्परावो। धर्म भूम सत बीज कर, वैसी किरस कमावो। तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझै बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाट चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूंडिया को निमी मेंडा, जे तुद पावे साहेबा तू मैं हूं तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हेको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम। रहाओ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना, अंतर वसना जाननी कड़ ब्रह्म लुकाना। एक तप सी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा आप नचीने तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवे जावे। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे, नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाणे, नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मने समाए ले, पहो जल सज तरना या जुगा दयाल, तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाए। गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै। रहाओ कूड़ा लालच छोड़ी तो साच पछाणे, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजी क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख भारी, साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे भाई, अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम न विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चलन हार वाट फटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। ममता मोह विसर्जे अपने कर आया। रहाओ सच मिले सचियार कूड़ ना पाई है, सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं। रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं, हुक्मी वजो लिखाए आया जानी है। लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है, हुक्मी पैंदा जाए दरगे पानी है। हुक्मे ही सरवार बंदर बाणी है, लाहा सच न्याओ मन वसाई है। लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है। ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है।

सब नावै नौ लोई दी जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावै सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए। तू बेअंत दयाल है तेरी सरनाई गुरपुरे ते पाई है नामे वड़ियाई। अरहाओ अंतर बाहर एक है बहुविध से ट्यो पाई। हुक्मे कार कराईंदा दूजा किस कही है पाई। बुझना या बुझ

करावै सो करी प्यारे, अवर किश कर न जाए। दिन रहण सब सुहावने प्यारे, जे जपिए हर नाओ साची साच साई कार कमावनी प्यारे। तुरमस्तक लेख लिखाए एको आप वर्तदा प्यारे, कट कर रहा समाए। संसार कूप ते उधर लै प्यारे, नानक हर शरण आए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ससै सोए सिरठ जिन साजी, सबना सहव एक भया। सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल पया। मन काहे पूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा तो पड़िया रहाओ। ईवड़ी आदि पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई। इन्हां अखरां मैं जो गुरमुख बूझै, तिसर लेख न होई।

दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। तदै तार कला जन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिसदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सो हगण भैने, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण कहो परपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यइय जन्म ना होवी कदी, जेकर सच पछाणे। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब यंत्र, जेते किए जनता। जंतो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, पाणै ताकै हुकम पया। ववै वासदेव परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तुसै त्यावो जे अमर होवा, तुसै त्यावो सच समावो।

आ सच्चाई शब्द में लाई। सातन मन अंत पया हर जियो मेल प्यारे राम, सातन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम। शब्द अपारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसे, से सुहावी जा पर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे। जित कर नाम हर सदा त्याई सोहेलड़ा जुग चारे, नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कार्ज सारे। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर तीजा, साजन मेरे प्रीतमा तुम सहकी भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो। भगत करो तुम सह केरी जो सह प्यारे पावे, अपना पाना तुम करो ता फिर सह खुशी ना आवे। भगत पाव एह मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे, कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चितलावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे, हर सोहिला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहु सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाणे। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे, इव कह नानक सो बैरागी अंधन हर लिव लावे। जह जह मन तू तामदा तह तह हर तेरे नाले, मन स्याण पछोड़िया गुर का शब्द समाले। साथ तेरा सो सहो सदा है एक खिन हर नाम समाल है, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे। साचे नाल तेरा गंड लागे गुरमुख सदा समाले, इउं कहे नानक जह मन तू तामदा तै हर तेरे सदा नाले। सतगुर मिलिया तावत थमिया निज कर वसिया आए, नाम विहा जे नाम ले नाम रहे समाए। तावत थमिया सतगुर मिलिया दसवां द्वार पाया, तिथे अमृत भोजन सहित उन्हें उपजै जित शब्द जगत थम रहाया। तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहा समाए, इउं कह नानक सतगुर मिलिया तावत थमिया निज कर वसिया आए। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंगमान। मूल पछाण ता सह जाने मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होवा प्रमाण, इउ कह नानक मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जाहे, माया मोहनी मोहया फिर जूनी पवाहे। गर्भ लागा जाहे मुग्ध मन अंत गया पछतावहे, अहंकार तिसना रोग लगा बिरथा जन्म गवावहे। मन मुख मुग्ध चेतै नाही अगै गया पछतावहे, इउ कह नानक मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जावहे। मन तू मत मान करें जे हाँ किछ जानदा, गुरमुख निमाणा हो अंतर अज्ञान हाँ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। निमाणा सतगुरु अगै मत किछ आप लखावहे, अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावहे। सतगुर कै पाणे करह कार सतगुर कै पाणे लाग रहो, इउ कह नानका छड़ सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहु चित आया, महा आनंद सहज पाया मन तन सुख पाया। सो सहु चित आया मन वसाया, अवगुण सब विसारे जा तिस पाणा गुण प्रगट होए सतगुर आप सवारे। से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़िया दुतिया पाओ चकाया, इउं कह नानक तन सो वेला जित मैं।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवै, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावै। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। प्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रभ मुरारी सर्व सुख हरन आयो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुझते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगत संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कहो जे होए पवन, बेअंत अंत ना जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकि शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाई या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बिकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रहया, घट घट वासी आप वर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिद जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत कर मलट पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग देखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद आंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत। शंत पिनी रैनड़िए चमकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरै आंदेनो, चरण कमल ध्यान हिरदै प्रभ सिर नाही एक खिनो। तज मान मोह बेकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िया आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तर सब हरे। मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछै कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਬਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ।

नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहने ना पायो, बिन सतगुर कहने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नू कर प्रगटिया सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला। हों विच आया हों विच गया, हों में जमया हों विच मुआ, हों में दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सचियार कूड़ियार, हों विच पाप पुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरी है हों विच धोवै, हों में जाति जनसी खोवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों में छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै।

निर्जास। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। साहिब सेती हुक्म ना चलै, कही बने अरदास। कूड़ कमाणै कूड़ो होवै, नानक सिफत विगास। महला दूजा, नाल इयाने दोस्ती, वाडा रूस्योने हो। पानी अंदर लीक ज्यों, तिसदा थाओ ना थे हो। महला दूजा, होए इयाना करे काम, आण ना सकै रास। जे एक याद चंगी करे, दूजी पीवे रास। पौड़ी चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे पाए। हुरमत तिसनो अगली, ओ वजो पे दूना खाए। खसमे करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए। वजो गवाए अगला, मोहे मोहे पाना खाए। जिस दा दिता खावना, तिस कही ऐसा वास। नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चलै अरदास। श्लोक महला दूजा।

नानक सेवक कंडीय जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

दोतु के एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जियो के चौपदे एक तुके सनक सनंद।

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई इस मटकी मैं शब्द संजोई हर का बिलोबना मन का बिचारा गुर प्रसाद पावे अमृत धारा कहो कबीर नजर करे जे मीरा राम नाम लग उतरे तीरा आसा बाती सुकी तेल निखूटा मंदल ना बाजै नट पै सूता बुझ गई अगन नानक स्यो धुआ रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब भूल बिगारियो अपना काज कथनी बदनी कहन कहावन समझ परी तो बिसरियो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे तिनते नाही परम पर दूरे आसा सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राख स्थेते रा मैया हो बारक तेरा काहे ना खंड से अवगन मेरा रहाओ जे अत क्रोप करे करताया ता पी चीत ना राख समाया चिंत पवन मन परयो हमारा नाम बिना कैसे उत्तर सपारा देह बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा आसा हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर वाहो वाहो क्या खूब गावता है हर का नाम मेरे मन पावता है रहाओ नारद सारद करै खवासी पास बैठी बीबी कवला दासी कंठे माला जेवा राम सहंस नाम लै लै करो सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुर्क दऊ समझावो आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन कौ पाती तोरै सो पाहन निर्जियो पूली मालनी है ओ सतगुर जागता है दे ओ रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी फूल शंकर दे ओ तीन देव प्रतख तोरै करै किसकी से ओ पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गण नहारे खाओ पात पहत यार लापसी कर करा का सार भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार मालन पूली जग पुलाना हम पुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कष्ट अपना कियो तीस बरस कष देवन पूजा फिर पछताना बिरद पयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलियो रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुक्त फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीरिया साहब है जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे हर जियो कृपा करे लिव लावै लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर तन पायो अंते चलद्या नाल चलियो कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछु लै ना गयो आई तरब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़ चलियो आसा काहू दीने पाठ पटंबर काहू पलंग निवारा काहू गरी गोदरी नाही काहू खान परारा अहे रखवाद ना कीजै रे मन सो किरत कर ली।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पए दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कहो सिमरत।

कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर कौ दूध पी आए। सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। सात सुहान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। अमृत लै लै नीम सिंचाई, कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई। आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई, तेह रावण कर खबर ना पाई। क्या मांगो कि थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण कर दिया ना बाती। चंद सूरज जाके तप्तर सोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। गुरमत रामै नाम बसाई, आश्चर रह ना कथू जाई। कहत कबीर सुनो रे लोई, राम नाम बिन मुक्त ना होई। आसा पहला पूत पिछैरी माई, गुर लागो चेले की पाई। एक अचंबो सुनो तुम पाई, देखत सिंह चरावत गाई। रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई, देखत कुतरा लै गई बिलाई। तले रे बैसा ऊपर सूला, तिसके पेड़ लगे फल फूला। कोरे चार भैंस चरावन जाई, बाहर बैल गोन कर आई। कहत कबीर जो इस पद बूझे, राम रमत ते सबके सूझे। बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ। दो तुके सत, एक तुका एक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिंद ते जिन पिंड किया। अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया। बहुर लागी माया,

विचारा, राम राय सो दूलो पायो, अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए, कोट ते तीसो जाना, कह कबीर मोए ब्याह चले है, पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे, ओ किन बिद रहन रहो रे, सेजा रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सौ कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती, तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगड़ा, झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत, तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जेहबा बिस

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिरलीन, रहाओ नैन देख पतंग उर्जै।

कृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी, सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पहे राम प्रसादा, आसा रोजा तरह मनावे अल्लाह, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देखे, काहे को चख मार है, काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देखे, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेखे रहाओ, साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी, हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

भजन जे गत होवै नित नित मेंढक नावै जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै मनो कठोर मरै बानारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरै हाड़म्बै ता सगली सैंतर आई।

एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मान सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जत

आसा सेख फरी जियो की बाणी एको अंकार सतगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया रते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते पोए भारतीय रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दर वेस से तिन धन जने दी माओ आए सफल से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच चुम्मा पैर मूह तेरी परै खुदाए तू बख्शंदगी सेख फरी दै खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गौर करे आज मैं लावा सेख फरीद टाक मकुंजड़ियां मनोम चिंदड़ियां रहाओ जे जाना मर जाई है घुम ना आई है झूठी दुनिया लग ना आप वंजाई है बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए जो गुर दसै वाट मुरीदा जोली है शैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जग ना कोई थिर रया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कतक कूंजा चेत डाओ सावन बिजलियां सियाले सोहंदियां पिर गल बाहड़ियां चले चलन हार विचारा ले मनो गंडें दिया शे मां तुड़न दिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल उलामे जी सहे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंग गुर प्रसाद राग गुजरी महला पहला चौप दे कर पहला तेरा नाम करी चन नाठिया जे मन उरसा होए करनी कुंगू जेरा लै कट अंतर पूजा होए पूजा कीचै नाम ते आई है बिन नावे पूज ना होए रहाओ बाहर देव पखाली है जे मन तो वै कोए झूठ लह जियो मन जी है मोख पयाना होए पशु मिले चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे नाम विहुने आदमी त्रिग जीवन कर्म करे नेड़ा है दूर ना जाने आओ नित सारे संभाले जो देव ऐसो खावना कहो नानक साचा है गुजरी महला पहला नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे वेद पड़े मुख कंठ सवार ताको अंतना जाई लखना आवत जात रहे गोबार प्रीतम क्यों बिसरे मेरे प्राण आधार जाकी भगत करे जन पूरे मुन जन सेवै गुर विचार रहाओ राव सस दीपक जाके त्रिपवन एका ज्योत मुरार गुरमुख होए सो अहिरस निर्मल मन मुख रहण आधार सिद्ध समाध करे नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत सब तुन जागै सतगुर चगर नवेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना जित हर प्रीत ना पाए जित कम हर विसरै दूजे लगे जाए ऐसा सतगुर सेविए मना जित सेवे गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर सेती चित गह रहै जरा का पौ ना हो वई जीवन पदवी पाए रहाओ
ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਉਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ ਵੇਖ ਜੈਸੀ ਭਗਤ ਬਣੀ ਆਪ ਸੇਤੀ ਆਪ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਈ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੂੜੈ ਕੀ ਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਿਆ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜੀਓ ਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਚਿਤ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਕੀ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ ਜੀ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੈ ਇਹਾ ਸੇਵ ਬਣੀ ਜੀਓ ਰਹਾਓ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ ਹਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਰ ਮੇਰਾ ਸਾਕ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਰਾਸ ਕੂੜੀ ਹੈ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਲੈ ਜਹਾਂ ਹਉ ਜਾਉ ਤਹਿ ਜਾਈ ਸੋ ਝੂਠਾ ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਗੇ ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੋਵਾ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੁਗ ਮਾਹੇ ਨਾ

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कार काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइयै। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। अठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनार हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुलहा हर तन बेड़ी। हर हर तार पुराना, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नवनिद पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो टोट न आवै। हल्त पल्त कै संगे लाद खजाना, गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जा का अंत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी। भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत अनदे अनंता, रंग तमासा पूर्ण आसा। कबह ना व्यापै चिंता, पवर तुम्हारा एहो मन होवो। हर चरणा हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो। ज्यों बूंदे चात्रक मौला, गुजरी महला पंजवा। मता करै पछम कै ताई, पूर्व ही लै जात।
ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪ ਨਹਾਰਾ ਆਪਣ ਹਾਥ ਮਤਾਂਤ ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਨਾਯਾਤ ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ਰਹਾਓ ਦੇਸ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋੜਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ ਲਸਕਰ ਨੇਵ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜੰਪਰ ਉਠ ਸਿਦਾਸ ਹੋਇਆ ਨਨ ਮਨ ਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾ ਨਾਤ ਜੋ ਅਨਿੰਦ ਨਿੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਖਾਤ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤੇ ਜਨਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਜਨ ਜਪਿਓ ਤਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖ ਮਮਤਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਟੇ ਹਰ ਜਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਾਇਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਹਾਓ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਓ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਨੀਸਾਨੀ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਥਾਈ ਆਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰੰਗ ਰਵਿਓ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭੈ ਕਹਿ ਕਰ ਆਇਆ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟੇ ਖਨ ਭੀਤਰ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਸਮਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਮਾਨੁਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਭਰਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਪਉ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਅਵਰ ਸੇਵਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਿਤ ਮਾਨ ਮਹਤ ਜਸ ਘਟੈ ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੈਨ ਸਾਕ ਕਿਤਹੀ ਕਾਮਨਾ ਆਇਆ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਨੀਚ ਕੁਲ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੰਗਮਨ ਵਾਇਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਲਾਖ ਕੋਟ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਬਿੰਜਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਜੀ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪੁਜੀਆ ਰਾ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਸੂਜੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਭੈ ਪੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਚਰਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਛੈ ਸੁਖ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਪਾਇਆ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਚ ਪਦਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਥਮੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਕੈ ਵਾਸਾ ਊਹਾਂ ਛੋੜ ਧਰਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚਿੱਤਰਸਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਮੰਦਰ ਸੰਗ ਨ ਕਛ ਹੂੰ ਜਾਇਆ ਅਵਰ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਲੋਭ ਲੱਭੀ ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੀਓ ਹਰਨਾਮਾ ਜੀ ਕੋ ਇਹਾ ਵਸਤ ਫੱਬੀ ਰਹਾਓ ਇਸ਼ਟਮੀਤ ਬੰਧ ਪਸੁਤ ਭਾਈ ਸੰਗਮੰਤਾ ਰਚ ਹਸਿਆ ਜਬ ਅੰਤੀ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ ਉਨ ਪੇਖਤ ਹੀ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਸੰਪੈ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ ਪਹਾੜੀ ਕਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਪਇਓ ਬੇਰਾਨਾ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਰਥ ਸੰਭਾਹੇ ਗਹੁ ਕਰ ਕੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜਬ ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਮੀ ਤਾਈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਸੁਖ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਕੁਟੰਬ ਸਹਾਈ ਨਾਮ ਸੰਪਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਨ ਬੁਝਾਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰੜਾਇਆ ਬਿਨਸਨਾ ਆਵੈ ਜਾਈ ਹਰ ਜਪ ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਛੂਟੇ ਰਹਾਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਿਆਲਾ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਪਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमयारो। गुजरी महला पंजवा है नाही को बूझन हारो। जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गहना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ। आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूर तो अवर सियानपो जन को कछु ना आयो। जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ। जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो। शरण पर्यो नानक ठाकर की अपै दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला। संत सेवा कर पावनी लाई है त्याग मान हर ठीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह कै संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला। मिलबे की महिमा वर्ण ना साकाओ नानक परै परीला। गुजरी महला पंजवा मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपन ही। तीन देव अर कोड़ते तीसा तिन की हैरत कछ ना रही। बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही। कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवा दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना त्याया। हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल पोरा। ठाकर तुझ बिन आहे ना मोरा मोहया नाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहा उहा तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम होत जावै प्रभ सेती रंग लाई। मन को एह उपदेश दरड़ावै सह सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे माया बंद बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक भव पांति नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावै नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मै थापो थापनहारा कीमत जाय ना करी। राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो धरी। त्याई है अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खो तार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का
बसो मेरे मन माही, चरण कमल रिदमाए सुन।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही कौ प्रभयाही, नानक टेक पही करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पगचारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हरस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करता है जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाई है जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंध सेती कर जाई है जाते काल न बिरथी जाइए। आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाइए, चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जीवन को दाता, भगत परे भंडार जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जाको वारा दे ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार, होए सहाय जिस तू रखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेसर अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार।

जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू तिन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लव लाए। पौड़ी टाडी करे पुकार, प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए। पूरा पाए सी जो तुर लिखिया लेख, से कर्म कमाए सी। जा होवे खसम दयाल ता महल कर पाए सी, सोपरा मेरा अत वड्डा गुरमुख में लाए सी। श्लोक महला तीजा। सबना का सहु एक है, सद ही रह हजूर। नानक हुक्म ना मनई ता कर ही अंदर दूर। हुक्म पीत ना मनाए सी, जिन को नजर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा। रैन सबाई जल मुई कंत ना लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राओ। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर एको दाता उपाय कित ना पाई है। हर कर्म विधाता गुर शब्दी हर मन वसै, हर सहजे जाता अंदर हो तृष्णा अग्न बुझी। हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख बोलाता। श्लोक महला तीजा। काया हंस क्या प्रीत है, जे पया ही छड़ जाए। एसनो कूड़ बोल के खवाली है, जे चलद्या नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है, पौने पुछो जाए। हाओ ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुक्म ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा। एको निश्चल नाम तन, होर तन आवै जाए। इस तन को तस्कर जो है ना सकई, ना ओ चक्का ले जाए। एहो हर तन जीए सेती रव रहे, आ जीए ना ले जाए। पूरे गुरते पाई है मनमुख पल्ले ना पाए, तन वापारी नानका जिन्ना नाम तन खट्या आए। पौड़ी मेरा साहेब अत वड्डा, सच गैर गंभीरा। सब जग तिसके वस है, सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल तन तीरा, कृपा ते हर मन वस है भेटे गुरसूरा। गुणवंती सा लाहया, सदा थिर निचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया, जो हर सुख पर हर त्याग दे। दुख हमें पाप कमाए, मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे। तिन बूझना काई पाए, हलत पलत ओए सुख ना पावे। अंत गए पछताए, गुर प्रसादी को नाम ते आए। तिस हमें विचों जाए, नानक जिस पूर्व होवै लिखिया। सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वरतदा कूड़, तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चेतना भिजई, मुख फी काया लाओ। ओए तरमरलाए नारलन, ओना अंदर कूड़ सुवाओ। नान करता बणत बनाई, मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे। गुरमुख तरे जप हर नाओ। पौड़ी बिन बूजे वड्डा फेर पया, फिर आवै जाई। सतगुर की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई। तृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई। सदा सदा सालाही है, हृदय लिवलाई। श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए। सबना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसै, जप हृदय सदा सुख होए। अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए। महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन, हर पावै गुणी निदान। हर सुखदाता मन वसै, हो मैं जाए गुमान। नानक नदरी पाई है, ता आंदन लागै ध्यान। पौड़ी
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਮਨਸੈ ਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਤਹਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ, ਅੰਧਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਐ, ਜੇ ਅੰਧਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੈ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕੁਮਾਵੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਤਿਸ ਜਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਟ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਅੰਧਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ, ਰਸਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਏ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ, ਨਿਤ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਏ। ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਜਾਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਵਾਏ, ਇਤਕ ਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਚੈ ਪਚਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵੰਤ ਛਿਡਾਏ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਕਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮਾ ਉਰਤਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਧਨ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤੁਰਪੂਰਾ ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈਐ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਦਾ ਖੁਆਰ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਸੱਚੈ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੀ ਉਪਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਏ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ,

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हों मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेख है, दिखा के नै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाइए, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा, श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, महला तीजा, एहो मन के तड़िया, जुग भरमिया, थिर रह ना आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलियो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै ना जाए, पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी, श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह बाणी सच है, सच मिला वाह होए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए, महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रमिलया आई, वडभागिया वाह वाह मोह हो कढाई, वाह वाह करे सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई, पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ को सत अभमानी, परम पूले नजर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी, श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए, वाह वाह करत्या

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परमगढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया। नाम निदानिया खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजानिया, जिता जन्मया पार आप पछानिया। महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंद्या जियो तू, कमावद्या सुख पुंच, ते आएद्या तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमण, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसके वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास त्यायन तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार। राख ले हो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांद्या खांद्या मोह कठा, पै नंद्या सब अंग। नानक त्रिग तिना दा जीवया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला, मलै ना लाछ पार मलो। परम लियो बैठोरी आई, आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कह किन बूझी है, रमैया या कुलरी बाई। रहाओ ज्यों आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यों जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश है कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारे, फूल पावर जलमीन बिगा।

काहे भया सन्यासी परमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत ना पाया। काए जपो रे काए तपो रे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम मत बिसरै रहाओ। अंतकाल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा घर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर, ए चाल बनी है भली, लटरी मदरी ठाकर पाई, ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की, जो पावे पिरसा भली, नानक ग्री

मुख हर हर हर बोली है, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हौ फिरो दीवानी आवल बावल, तिस कारण हर ढोली है, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिसकी गुलगुली है, सतगुर पुरख मनावो अपना, हरे अमृत पी झोली है, गुर प्रसाद जन नानक पाया, हर लादा देह टोली है, देव गंधारी, अब हम चली ठाकर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता। अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता। सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है। अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है। रहाओ मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है। टिकट ना पावै बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है। संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल। पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल। रहाओ दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया। हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा। अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ। हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पारि उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ।

तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवां प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा रहाओ। प्रातः काल लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लइए। राग देव गंधारी महला पंजवां कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना सम सर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचै भ्रम आयो है सगल थान रे आहे पर्यो संत पाछै रहाओ। किस हौ सेवी किस आराधी जो दिष्टै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बांछै। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छै आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछै। देव गंधारी पंजवां अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहू मद निरारे रहाओ। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवां हर जप सेवक पारे उतारियो दीन दयाल पय प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवां कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवां कर पंजवां एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी उचा मोहन सबते उचा आना

ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावै गो हर जी को द्वार मिल संगत तज अभिमान कहो नानक पाए है परम निधान देव गंधारी पंजवा जानी ना जाई ताकि गात रहाओ कह पे खा रहा हूं हाँ कर चतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचर्द दिन रात अगम अगम ठाकरे आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कहन ना जाई पर परात देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अनक ओही रे एक समार रहाओ सफल मूर्त गुर मेरे माथे जत कत पेखो तत साथे चरण कमल मेरे प्राण आधार समराथ्या था बड़ा प्रम मेरा कड़कड़ अंतर साहेब नेरा ताकि सरन आसर प्रभ नानक जाका अंतना पारा वार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे माने उल्टी रे सागर से कर उल्टी रे झूठ है की रे झूठ प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे साकत संग ना छुटकी रे रहाओ ज्यो काजर पर मंदर राखेओ जो पैसा कालू खीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुर मिल छुटकी त्रिगुटी रे मांगो दान किरपाल किरपा निद मेरा मुख साकत संग ना जुटसी रे जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पग्गा हेठ रुलसी रे राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के समर्थ पंथ बिठले हों बल बल जाओ गावन पावन संतन तोरे चरण उमा कह पाओ रहाओ जासन बासन सहज केल करना मैं एक अनंत अनुपैठाओ रिद सिद्ध निद करतल जग जीवन सर्वनाथ अनेक नाओ दया मया कृपा नानक कहो सुन सुन जस जीवाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग देव गंधारी महला नावा यह मन नैक ना कहो करै सीख सिखाए रहे हो अपनी सी दुर्मत ते ना टर रहाओ मद माया कै पयो बावरो हर जस नह उचरै कर परपंच जगत को डहकै अपनो उदर भरै सवान पूछ ज्यो होए ना सूदो कहो ना कान धरै कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नावा सब किश जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुत बंधप आरफुन गृह की नार रहाओ तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार आदि करी को न रख करते देत निकार मृग तृष्णा ज्यो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक भज राम नाम नित जाते हो ते उधार देव गंधारी महला नावा जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ मेरो मेरो सब कहत है हित स्यों बांध्यो चीत अंतकाल संगी नह को ए अचरज है रीत मन मूर्ख अजू न समझत सिख दे हारे ओ नीत नानक पौजल पार पर

अकाल मुहूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिहागड़ा चौपदे महला पंजवा कर दूजा दूतन संगरिया भयंगन बसरिया अन क्यों परिया तौ मैं हर हर करिया तौ सुख सहजरिया रहाओ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल पटरिया बिरख एकत्रिया बहु बंध परिया थिर साज सफरिया जय कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नावा हर की गतने को जाने जोगी जति तपी पचहारे अरबो लोक सियाने रहाओ छिन में राव रंक कौ करई राव रंक कर डारे रीते परे परे सख नावे जै ता को व्यवहारे अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रह न्यारा अगंत अपार अलख निरंजन जेह सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरण ताहे चितलायो राग बिहागड़ा संत महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम त्याई है मेरी जिंदड़िए गुरमुख नामया मोले राम हर रस बीदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए अंत ना काहूं डोले राम मन चिंदियाड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बहण लाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिया हर लिवलाए राम चिरी विछुन्ना हर प्रभ पाया गल मिलिया सह सुभाए राम जन नानक मन आनंद पाया है मेरी जिंदड़िए अनहद शब्द बजाए राम सखी सहेली मेरी आ मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मिला वै राम हो मन तन देवो तिस अपना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुना वै राम गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदियाड़ा फल पावे राम नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम ते आवे राम कर किरपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए गुरमत नाम प्रगासे राम हाँ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए ज्यो जल बिन कमले उदासे राम गुरपुरै मेलाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रपासे राम तन तन गुरु हर दस्या मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हौ मैं माया बिख है मेरी जिंदड़िए हर अमृत बिख लै जाए राम मन सुक्का हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम ते आए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यो बालक लग दुध खीरे राम हर बिन सांतना पाईए मेरी जिंदड़िए ज्यो चात्रक जल बिन टेरे राम सतगुर सरणी जाए पाओ मेरी जिंदड़िए गुण दसे हर प्रभ के रे राम जन नानक हर में लाया मेरी जिंदड़िए घर वाजे शब्द कनेरे राम मन मुख हौं मैं विछड़े मेरी जिंदड़िए बिख बाधे हौं मैं जाले राम जो पंखी कपोत आप बनाया मेरी जिंदड़िए त्यो मनमुख सब वस काले राम जो मोहे माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए से मनमुख मूड बिताले राम
जन त्राहे त्राहे शरणागति मेरी जिंदड़िए, गुरु नानक हर रखवाले राम। हर जानो हर लिव उबरे मेरी जिंदड़िए, तुर भाग वड्डे हर पाया राम। हर हर नाम पोत है मेरी जिंदड़िए, गुर खेवड़ सब तराया राम। हर हर पुरख दयाल है मेरी जिंदड़िए, गुर सतगुर मीठ लगाया राम। कर कृपा सुन बेनती हर हर, जन नानक नाम ते आया राम। बिहागड़ा महला चौथा, जग सुकृत कीर्त नाम है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्त हर मन तारे राम। हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जप हर हर नाम उधारे राम। सब किल विख पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़िए, मल गुरमुख नाम उतारे राम। वड पुन्नी हर त्याया जन नानक, हम मूर्ख मुग्ध निस्तारे राम। जो हर नाम ते आए दे मेरी जिंदड़िए, तिन्ना पंचे वसगत आए राम। अंतर नाम निध नाम है मेरी जिंदड़िए, गुर सतगुर लख लखाए राम। गुर आसा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़िए, हर मिलिया भुख सब जाए राम। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़िए, जन नानक हर गुण गाए राम। हम पापी बलवंचिया मेरी जिंदड़िए, पर द्रोही ठग माया राम। वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुरपुरे गतमित पाया राम। गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीवाया राम। जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए, तिनके शब्दों गवाया राम। आति उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, जित जपिया पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जुग जाते राम। हम मैं मैल सब उत्तरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर सर नाते राम। अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा, हम बलिहारी तिन को मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम अधारो राम। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़िए, बिख भौजल तारन हारो राम। जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए, तिन संत जना जयकारो राम। नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए, सब दुख निवारण हारो राम। सार रसना तन तन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। ते सरवण भले सो बनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुर देखे राम। ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जासो हर हर लेखे राम। तिस जन के पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सै राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम ने सै राम। धरत पताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी बै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण त्रैण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम ते आवै राम। नानक ते हर दर पैनाया मेरी जिंदड़िए, जो गुरमुख भगत मन लावै राम। बिहागड़ा महला चौथा, जिन हर हर नाम ना चेते ओ मेरी जिंदड़िए, ते मनमुख मूड आने राम।
ਜੋ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਏ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਸੇ ਅੰਤ ਗਏ ਪਛਤਾਣੇ ਰਾਮ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਣ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਲੁਬਾਣੇ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਲ ਉਭਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ਸਭ ਜਾਏ ਮਿਲਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਹੋ ਆਵੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ ਸਾਹ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਸਾਹ ਘੜੀ ਸੋ ਮੋਹਤ ਸਫਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜਿਤ ਹਰ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਆਵੈ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ ਹਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭ ਕਿਛ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਸੋ ਡਰੈ ਜਿਨ ਪਾਪ ਕਮੱਤੇ ਰਾਮ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਤਿੰਨ ਜਨ ਸਭ ਡਰ ਸੁੱਟ ਕੱਤੇ ਰਾਮ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਭਤੀਜਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਸਭ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁਪੱਤੇ ਰਾਮ ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜਿਨ ਪੈਰੀ ਆਣ ਸਭ ਕੱਤੇ ਰਾਮ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਨਿਤ ਸੇਵੀਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜੋ ਸਬਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇਕਾਰਾ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਦੀ ਕਿ ਚੱਡਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਹਰ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਚੱਖ ਮਾਰਨ ਸਭ ਨਿੰਦਕ ਕੰਡਾ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹਰ ਲਿਖ ਛੱਡਾ ਰਾਮ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਜੋ ਜੀਏ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਸਭ ਵੇਖੇ ਮਨ ਮੁਕਰਾਈਐ ਰਾਮ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਕਾਲ ਗਵਾਈਐ ਰਾਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਦਰੀ ਆਈਐ ਰਾਮ ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ ਰਾਮ ਸੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਹਿਨਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਅਹਿਨਿਸ ਸਾਜ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਨਦਰ ਨੀ ਸਾਣੇ ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਆ ਗਾਣੇ ਰਾਮ ਹੇ ਰਸਨਾ ਜਪ ਗੋਬਿੰਦੋ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਮ ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਤਿਸ ਮਨ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਰਾਮ ਜਿਸ ਭੇਟੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਸੋ ਹਰ ਧਨ ਨਿਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਦਾਤਾ ਰਾਮ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਰਾਮ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪ ਨਹਿ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਰਾਮ ਛੱਕਾ ਇੱਕ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਇੱਕ ਚੰਬਉ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਰਾਮ ਹਰ ਰੰਗ ਅਖਾੜਾ ਪਾਇਓ ਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਆਵਣ ਜਾਣ ਸਵਾਏ ਰਾਮ ਆਵਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਿਨੈ ਕੀਆ ਜਿਨ ਮੇਦਨ ਸਿਰ ਜੀਆ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆ ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਸਮੈ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾ ਦੇ ਰਾਮ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਜਮਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਦੇ ਰਾਮ ਮਾਰਗ ਬਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ
जिनको विधाता है तरो लिखिया तिन्ना रहन दिन लिवलाई है। हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त होवा हर हर नाम आरा दे। कर जोड़ो संते कत्र होए मेरे लाल जियो अबनासी पुरख पूजे हा राम बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो। एहो मन तन सब अर्पे हा राम मन तन धन सब प्रभु केरा क्या को पूछड़ावे। जिस होए कृपाल दयाल स्वामी सो प्रभ अंक समावे। भाग मस्तक होए जिसकै तिस गुर नाल सनेहा जन कह नानक मिल साध संगत हर हर नाम पूजेहा। दह दिस खोज तहां फिरे मेरे लाल जियो हर पायाड़ा कर आए राम हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिसमै रिया समाए राम। सर्वे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया देरा दुख नाठा अम्यो हर चोया। जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए जन कह नानक सतगुर मिलाया हर पायाड़ा कर आए। राग बिहागड़ा महला पंजवा अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना प्राण आधारा राम सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल की अपरिया पारा राम। गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो कंत निमाणिया नैन तरसन दर्श परसन नैन नींद रहन विहानिया। ज्ञान अंजन नाम बिंजन पै सगल सिंगारा नानक पयम पै संत जंपै मेल कंत हमारा। लाख उलाहने मोहे हर जब लगन है मिले राम मिलन को करो अपाव किश हमारा न चले राम। चल चित बेत्या नित प्रे बिनो कवन विधि ना तीजी है खान पान सिंगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजी है। आसा प्यासी रहन दिन यार रह ना सकिया एक तलै नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिलै। सेज एक प्रयो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम। निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा निदे प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नम निदे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए नानक पयम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाई है। संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इश्पुनी मन सांत तप्त बुझाया राम। सफला सोजन सरहणे सुहावी अंत मंगल रसकना प्रगटे गोपाल गोबिंद लालन कवन रसना गुणपना। प्रम लोभ मोह बेकार थाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंधन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लगे तेरा पाणा राम। कर दया मया गोपाल गोबिंद कोय नाही तुझ बिना समराथिया गाथिया पार पूर्ण जियो तन तन तुम मना। मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीचे जाना बिनवंत नानक सरन तेरी रख ले ओ आवन जाना। साधा सरनी पाई है हर जियो गुण गाव है हर नीता राम। तूर भगतन की मंतन लगो हर जियो सब पद पुनीता राम। पथता पुनीता होहे तिन संग जिन बिदाता पाया नाम राते जी दाते नित दे चढ़े सवाया। रिद सिद्ध नव निध हर जप जिनी आत्म जीता बिनवंत नानक वडभाग पाईऐ साध साजन मीता। जिनी सच वणंजिया हर जियो
से पूरे सहराम बहुत खजाना तिन पह हर जियो हर कीर्तन लहा राम काम क्रोध ना लो व्यापै जोजन प्रभ सिंह रातिया एक जन एक मन राम कै रंग मातिया लग संत चरणी पड़े सरणी मंत ना ओ महा बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै सही सचे साहा नानक सोई सिमरिया हर जियो जा की कल तारी राम गुरमुख मनो न विसरै हर जियो करता पुरख मुरारी राम दुख रोग ना पौ ब्यापै जिनी हर हर त्याया संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मनसा ते आई मिलिया पुरखिया पारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच्छ पुनी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां कर दूजा एको अंकार सतनाम गुरप्रसाद वद सुख रै निड़िए प्रे प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसौ सदा पगा पग तूर बांछो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रेरंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक तार किरपा रहो चरण संग लगा मेरी सखी सहेलड़ियो प्रभ कै चरण लगे मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंगे हर भगत पाईऐ प्रभ ते आईऐ जाए मिलिए हर जना मान मोह विकार तजियै अर्प तन तन एहो मना बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रभ प्रीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए हर नाम नित नित नित जपै हर नार सुहागणे सब रंग माणे रांड ना बैसई प्रभ पुरख चराणे न दुख पावै प्रभ ते आवै तन ते वट पागिया सुख सहज सोवै किल बिख खोवै नाम रस रंग जागिया

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमे सरोवर पियो अमे सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संते संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभु मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदों से देह आवे।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नारक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है, सहजे होए सो होए।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध, महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज, नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै, तदों पुछना सेवक बिया, तदों क्या को लेवै क्या को देवै, जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतों पाया करतै, दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख, आपे अमृत पिया, आप निरंकार आकार है आपे, आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा, गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा, अंदन सहज प्यार, सदा आनंद गावै गुण साचे, अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया, तुर कर्म लिखिया करतार, नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा, कहया कथया ना पाईऐ, अंदन रह सदा गुण गाए, विणकर मैं कहना ना पायो, भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै, आप वसै मन आए, नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र, आप कथा आप भीजै, आपे ही बै पूजे करता, आप पर पंच करी जय। आप निर्विरत आप निर्विरती, आपे कथ कथी जय। आपे पुन सब आप कराए, आप अलिप्त वर्ती जय, आपे दुख सुख देवै करता, आपे बख्श करी जय। सलोक महला तीजा, सेखा अंदरों जोर छड़ तू, पाओ कर चल गवाए, गुर कै पै केते निस्तरे, पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू, सांत वसै मन आए, शांति विचकार कमावणी, साखसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किनै ना पायो, पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा, मन मुख माया मोह है, नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे, अंते होए सब शार, कर्म धर्म सुच संयम करे, अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै, सो थाए ना पवै, दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी, आपे खंडवर भंड करे, आप समुंद आप है सागर, आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा, जिसनो गुरमुख करे हरे, आपे पवजल आप है बोए था, आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता, अवरना दूजा तुझे सरे। सलोक महला तीजा, सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दुकटी है, हम मैं ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा, नाम रत्ता सतगुरु है, कलयुग बोइथ होए, गुरमुख होवै सो पार परै, जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है, आप की

आपे सबकट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप बेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सालाहे नर जय तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कुमाहे बिन सतगुर सेवे ठौर ना पावही मर जमै आवै जाहे बिन सतगुर सेवे फिका बोलना नाम ना वसै मन आए नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी हर नामे लगे प्यार नानक जन्म सवार ने अपना कुल का करन उधार। पौड़ी आपे चाट साल आप है पादा आपे चाटड़े पण कौवाने आपे मिता आपे पिता माता है आपे आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे एक थै आपे करे आने एक ना अंदर महल बुलाए जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई से जन सच्ची दरगे जाने। सलोक मर्दाना पहला कल कल वाली काम मद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी।

जाए रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है, हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है नाम वसै मन आए, नानक सतगुर मिले हमें गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सेज एक एको प्रभ ठाकर गुरमुख हर रावे सुख सागर, मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरु को जासा रहाओ, मैं अवगण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे, जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही, हाँ क्यों मिला मेरी माया, हाँ कर कर थाका उपाप बहुत तेरे, नानक गरीब राखो हर मेरे, वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी, जो पिर पावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ, मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे, हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही, हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन कौ जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

है तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ तुझे आपे कारण आपे करना हुक्मे जमण हुक्मे मरना नाम तेरा मंत्र आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ा।

जिनी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगै हम आदेसा। मैं सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम न आए जा सह बात न पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली जिन सौरिया समाए हों वारिया तिन सुहागणी अमाली तिनके तुमा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सा पूरे। मैं सर्व सुखां सुख पाया अमाली फिर सर्व रहा पर पूरे जन नानक हर रंग माणिया अमाली गुर सतगुर कह लग पैरे। वडहंस महला तीजा अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच तुहन सच शब्द विचारा अंधन सच सलाहना तन तन वड पग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ दासन दासा होए रहै ता पावे सच्चा नाम रहाओ। जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए। सच खेती सच बीजना साचा वापारा आंदन लाहा सच नाम तन भगत भरे पंडारा। सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्से तिस मिले मैली पाए थाओ। आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जोनी मूल ना पाहे गुरमुख दर साचा सचिया रहै साचे माए समाए। अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाहना सतगुर बलिहार जाओ। सच वेला मूर्त सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार। नानक सच्चा मिले ता मिले आपे ले मिलाए ज्यो पावे त्यों रखसी आपे करे रजाए। वडहंस महला तीजा मनुआ दे दिस्तावंदा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधकाई। काम क्रोध नित संतावे वाह वाह सहजे गुण रवीजे राम नाम इस युग में दुलभ है गुरमत हर रस पीजे रहाओ। शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निकर वासा पावे। ए मन मेरे सदा रंगराते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पए हर की सरनाई पाथर डुबदा काढ लिया साची वड़ियाई बिकसे अमृत पए गुरमत बुद्ध पाई। अको परमल पए अंतर वासना वसाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए। पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए मनमुख पूले बिख लगे अहला जन्म गवाया। हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया। नानक जिन कै हृदय वसया मोख मुक्त तिन पाया। वडहंस महला

करहो दया तेरा नाम लखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम खाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगण सुजाना सुर नर सुगण सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड़ मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जाम नायक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सह समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरे द्वारे जपै ता साचा एक मुरारे साचा मुरारे ताम जापै जा मन वसावे परमो पुलाना परमो पुलावा तुझे किया जाम ए चुका वह गुरप्रसादी करो कृपा लेहो जम उबारे जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हो आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावे दुख भूख संसार किए सस हो चुकावे बिनवंत नानक जाए सहसा बुझे गुर विचारा वड्डा साहब है आप अलख अपारा।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सौरलिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाण है कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कह पाए हर वार रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रलियाला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रावी जय अंधन नाम वखाण गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप पछाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम गुरमती मन निज कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी साचे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा सुमाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचे शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुति मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखा

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेवन अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मै गुणी समाई राम गुण मै गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल वेखावणी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख न होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखियां नु ते सच्चा कह दरबारा राम खोटे दरगह सुटियां नु उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखिया नो ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अत मोलिया फारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वा पारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हम मैं मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम

हर दयाल शरण आया, तू दुख भंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर भेट राम रस पाया जन।

बेखम पय अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़पागी लंघाए गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखवन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडपागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे मैं सदा रावे पिरे अपना सचड़ा शब्द।

ज्ञान रतन काट चानन होवा नानक नाम प्यारो सचड़ा आप जगत उपाया गुरबिन कोर अंधारो। वड़हंस महला तीजा एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचे आए गुर राखे से उबरे होर मर जमै आवै जाए होर मर जमै आवै जावै अंत गए पछतावै बिना मैं सुख ना होई ऐथै कमावै सो फल पावै मनमुख है पत खोई। जमपुर कोर अंधार महागुबार ना तथै पैण ना पाई एहो शरीर जजरी है इसनों जर पहुंचै आई। काया कंचन ता थी जा सतगुर ले मिलाए भ्रम माया विचों कटी है सचड़ै नाम समाए सच्चै नाम समाए हर गुण गाए मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रह दिन राती विचों हो मैं जाए। जिनी पुरखी हर नाम चित लाया तिनकै हौं लागो पाए काया कंचन ता थीऐ जा सतगुर ले मिलाए सो सच्चा सच सा लाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए बिन सतगुर परम भुलाणिया क्या मोह देसन आग्या जाए क्या देन मोह जाए अवगुण पछताए दुखो दुख कमाए नाम रतिया से रंग चलूला पिरकै अंक समाए। तिस जेवड़ियावर न सूझई किस आग्या कहिया जाए सो सच्चा सच सा लाहीऐ जे सतगुर दे बुझाए। जिनी सचड़ा सच सा लाहिया हौं तिन लागो पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाए तिन मिलिया मल सब जाए सच्चै सरन आए सच्चै सहज सुभाए नाम निरंजन अगम्या गोचर सतगुर दिया बुझाए। आंदन भगत करै रंग राते नानक सच समाए जिनी सचड़ा सच त्याया हौं तिनकै लागो पाए। वडहंस की वार महला चौथा लला बह लीमा की धुन गावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला तीजा। शब्द रते वडहंस है सच नाम उर तार सच संग्रह सद सच रह सच्चै नाम प्यार। सदा निर्मल मैल न लगई नदर कीती करतार नानक हौं तिन कै बलिहारणै जो अंदन जपै मुरार। महला तीजा मैं जानिया वडहंस है ता मैं किया संग जे जाना बग बपड़ा ता जन्म ना देंदी अंग। महला तीजा हंसा वेख तरंदियां बगा पे आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तले उपर पाओ पौड़ी। तू आपे ही आप है आप कारण किया तू आपे आप निरंकार है कोई अवर ना बिया तू करण कारण समर्थ है तू करे सोथिया। तू अणमंगया दान देवना सब ना हां जिया सब आखो सतगुर वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया। श्लोक महला तीजा पै विच सब आकार है निरपौ हर जियो सोए सतगुर सेवे आए हर मन वसै तिथै पौ कदे ना होए। दुश्मन दुख तिसनो नेड़ न आवै पोहे न सकै कोई।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुक्त गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करे प्रभ पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करे आप राखै जो तेरे मन पाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावै ना बूझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्स नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावै हर जियो ले उबारे आप सकौ बहु भला कर जाणै मनमुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाणी विच आवै अपने पाणे जो चले पाई विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के बंधन पाई परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटे नाही गुरमुख मुख द्वारा कर्म करै गुर शब्द ना पछाणै मर जन्मै वारो वारा हौ मेरा जग पलच रहया पाई कोई न किसी केरा गुरमुख महल पायन गुण गावन निज कर होए बसेरा ऐथै बुझै सो आप पछाणै हर प्रभ है तिसकेरा सतगुर सदा दयाल है पाई विण भागा क्या पाई है एक नदर कर वेखै सब उपर जेहा पाओ तेहा फल पाई है नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाई है सोरठ महला तीजा चौथके सच्ची भगत सतगुर ते होवै सच्ची हिरदय बाणी सतगुर सेवे सदा सुख पाए हम मैं शब्द समाणी बिन गुर साचे भगत ना होवी होर भूली फिरै आणी मनमुख फिरै

मन हर जब मीठा लागे भाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटै मनमुख कर्म करै भाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कहे ते अपार। आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई भाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया भाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया भाई। पूछो ज्ञानियां जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रा साधना आया। संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवट भागी, जिसनो वाह मिलाए। हर रस पी जन

आपे सतगुरु आप है, चेला उपदेश करे प्रभ आप है। आपे नाउ जपाए दा प्यारा, आपे ही जप जप है। आपे अमृताप है प्यारा, आपे ही रस आप है। आपे आप सलाहंदा प्यारा, जन नानक हर रस त्रापै। सोरठ महला चौथा। आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तोलाया। आपे साहो आपे वणजारा, आपे वणज कराया। आपे धरती साजियन प्यारै, पिछे टंक चढ़ाया। मेरे मन हर हर त्याय सुख पाया, हर हर नाम निदान है प्यारा। गुरपुरै मीठा लाया रहाओ। आपे धरती आप जल प्यारा, आपे करे कराया। आपे हुकुमर दा प्यारा, जल माटी बंद रखाया। आपे ही पाओ पाए दा प्यारा, बन बकरी सी हो हडाया। आपे काष्ट आप हर प्यारा, विच काष्ट अग्न रखाया। आपे ही आप वरत दा प्यारा, पै अग्न ना सकै जलाया। आपे मर जीवाएं दा प्यारा, साह लैंदे सब लवाया। आपे तान दीवान है प्यारा, आपे घर लाया। ज्यो आप चलाए त्यों चलिए प्यारे, ज्यो हर प्रभ मेरे पाया। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह वजाया। सोरठ महला चौथा। आपे सृष्टियो पाएंदा प्यारा, कर सूरज चंद चाणान। आपने ताणिया तान है प्यारा, आपने माणिया मान। आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सूड सुजान। मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत।

सुखिए को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाणे सब रोगी, करण करावन हार स्वामी अपना हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना भरम गवाता, तिसके पाणे कोई न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ। संत संग जाका मन शीतल, ओह जाने सगली ठंडी, हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत, ओह जन्म मरे बिललाती, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ता कहो सर्व परगासा, अज्ञान अंधेरे सूजिस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता। सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक एहो सुख मांगे, जह कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागे। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का, तन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्व कुशल तब थिया, संतन बेनो यवर ना दाता बिया, जो जो शरण पर साधु की, सो पार ग्रामी किया रहाओ। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है, इहां सुखिया गै मुख उजल, जन का संगवट भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केतक उपमा कही है, अगमा गोचर सदैव नासी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी,

जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई एह मन तेरा पाई रहाओ पाव मिलोवा मल मल तोवा एह मन तैकू देसा सुन मीता हो तेरी सरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा मान ना की जय शरण परी जय करै सो पला मनाई सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जय इउं दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रतपाले नित सार संभाले एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परयो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा पर पूरी रे पेखत सुन तो सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हो मित कर वरनाओ क्या जाना हो कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परा दी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना भरिया रे सोरठ महला पंजवा जिन्ना बात को बहुत अंदेसरो ते मिटे सब गया सह सैन यार सुख मन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज पाया जे ठाकर कहो सुनते अगाद बोध सोरदय गुरदया रहाओ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करै बेनती राग ठाकर ते हम तेरी सरनाया जह भंडार गोबिंद का खुलिया जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरदीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम वा भगत भंडार गुरु नानक कौ सौपे फिर लेखा मूल नान लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना से जन तृप्त अगाई गुणिया मोल जिस हृदय ना वसया ते नर तृष्ण।

जेह जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरणे जेह नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गरणे जेह गुरमान प्रभु लिव लाई ते महा आनंद रस करया जेह प्रभु बिसार गुरते बेमुखाई ते नरक कोर मैं परया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मगन चरनारा सोरठ महला।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमलन स्यो अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम रखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देह प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम्य अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओढ़ सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मान्या, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवां।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक का उपायो तन सासा। बिशरत यान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंत मंगल बिश्रामा। मन बाथ फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा। इहां सुख आगे मुखी उज्जल मिट गए अमन जाने। निर्भव पय हृदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम पागा। कहो नानक ताके पूर करमा जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा रतन शाड कौडी संग लागे। जाते कछु ना पाई है पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है। सिमरो हर हर नाम परानी बिनसै काची देह अज्ञानी रहाओ। मृग तृष्णा अर सुप्रम मनोरथ ताकि कछ ना वडाई। राम भजन बिन कामना आवस संग न काहू जाई। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा जी को कामना कीना। तावत तावत नह त्रिपतासिया राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो असंख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अबनासी। काम क्रोध बिख जारे महाबिखम यगन को सागर। साधु संग उदारे पूरे गुर मेट्यो परमान देरा। पज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ। हर हर नाम निदान रस पिया मंतन रहे अगाई। जत कत पूर रहे परमेश्वर कत आवे कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला। नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला। काल कलेस मिटे दुख सगले काटी जमकी फासा। कहो नानक प्रभ कृपा धारी मंतन पय बिगासा। सोरठ महला पंजवा करण करावण हार प्रभ दाता। पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला। सो प्रभ अंतर जामी मेरा गुरु हुआ आप सहाई। सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहाओ। गुर की शरण पए पैनासे साची दरगे माने। गुण गावते आराध नाम हर आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी। सदबलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पै सवारी। गोसट ज्ञान नाम सुनि उदरे जिन जिन दर्शन पाया। पयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी पूरा सदगुर त्याया। प्रभ जियो तू मेरो साहेब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला। गुण गावो रंग राता रहाओ। सतगुर नाम निदान।

स्वामी जो कुछ करे सोई सोई जाने रह न कछु वै शानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ उपजे अनक बेकारा बहुत जोन भरमत दुख पाया हमें बंधन के पारा दे के वा

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार सोरठ महला पंजवां गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ अवतराया कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी परमेसर आप हुआ रखवाला सांत सहज सुखिन मैं उपजे मन होवा सदा सुखाला रहाओ हर हर नाम दियो दारू तिन सगला रोग बेदारू अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी प्रभ अपना बिरद समारिया हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया गुर का शब्द पयो साखी तन सगली लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहिब गुणी गहेरा चप नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी सोरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलोवा वा

सो जन परम गत पावे, मरे न आवे जाई, हर हर नाम ते आई। एहो ब्रह्म विचार सो जानै, जिस दयाल होए भगवानै। बाबा नानक प्रभ शरणाई, सब चिंता गणत मिटाई। सोरठ महला पंजवां, पार ब्रह्म निबाही पूरी, काई बात न रहिया ऊरी। गुर चरण लाए निस्तारे, हर हर नाम सुमारे। अपने दास का सदा रखवाला, कर कृपा अपने कर राखे। मात पिता ज्यों पाला रहाओ, फटभागी सतगुर पाया। जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा। जप जीवै से वडभागा, हर अमृत बाणी गावै। साधा की धूरी नावै, अपना नाम आपे दिया। प्रभ करण हार रख लिया, हर दर्शन प्राण आधारा। एहो पूर्ण बिमल विचारा, कर कृपा अंतर जामी। दास नानक शरण स्वामी। सोरठ महला पंजवां, गुरपूरे चरनी लाया। हर संग सहाई पाया, जय जाइए तहां सुहेले। कर कृपा प्रभ मेले, हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई रहाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा। पतत पुनीत कर लीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सद जी संग रखवाला। हर दिन रहन कीर्तन गाइयै, बहुना जोनी पाइयै। जिस देवै पुरख विधाता, हर रस्त नहीं जाता। जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक सरणी पाया। सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै कीती पूरी। प्रभ रव रहे अपर पूरी, खेम कुशल पया इस नाना।

मिल साधु दुर्मत होए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाई है साध संग मिल त्याई है मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीव है परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्ब गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो।

पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। हर अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है। कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है। अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कलेश सब नाठे। गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जब पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगर्द हमारे राम नाम लगा जमल जाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अबनासी ता की सेवना बिरथी जासी अनंद करे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पै सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया संतो तिस बिन अवरना कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ। प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवे हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै नानक दास सच्चे गुण गावै। सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाय लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास तुम्हारे राखे पैज दास अपने की कार्य आप सवारे रहाओ। मेरा प्रभु पर पुकारी पूर्ण कल जनतारी नानक सरणी आया मन चिंदिया फल पाया। सोरठ महला पंजवा सदा सदा हर जापे प्रभु बालक राखे आपे। शीतला ठाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु होवा सदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की सब जी भया कृपाला। रहाओ प्रभ करण कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख संवंती। सोरठ महला पंजवा अपना कारण समराथा हर सिमरत सब दुख लाथा अपने दास की सुनी बेनंती सब नानक सुख संवंती। सोरठ महला पंजवा अपना गुरु ते आए मिल कुशल सेती घर आए नामै की वड़ियाई तिस कीमत कहन न जाई।
संतहो हर हर हर आराधो, हर आराध सबो किश पाइए, कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी, सो पाए जस वड पागी, जन नानक।

तरई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर। नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही बसावै। पर तन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नान पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागे ओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन सिओ लागे। जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे।

मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेह बा नेत्र सोतर सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल मैं बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख ना लखिए पाई, जग बुढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लै हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करै प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवै जावै ठौर ना पावै, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवै सो अमृत पीवै, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधकाई, वेद पढ़ै तै वाद वखाणै, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटै गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हर राखिया उर तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्शले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर ले रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸਚ ਬਾਣੀ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

आओ गुर की कार कमावनी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई हर आप वसै मन आए फिर का हुक्म ना जान पाई सा कुलखणी कुनार मन अठकार कमावनी पाई विणना मैं कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चा बैराग आंदन राते गुण रवे पाई निरपव गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिसकी वड्डी है दात मनमुख मैली डुमनी पाई दरगै नाही थाओ गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई मिल प्रीतम साहि समाओ एत जन्म हर ना चेतो पाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोहायोन पाई बिख्या नो लोभाए नाम समालै सुख वसै पाई सदा सुख सांस शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ महला पंजवां कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिनै उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी वथ किन कहिया क्यों देखिए पाई करता एक या कथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापै तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किश है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा गम अपार जी जंत प्रतपाल दा पाई नित नित करदा सार सतगुर पूरा भेटिए पाई शब्द मिलावन हार सच्चे चरण सिरेविय पाई परंप हो वै नास मिल संत सभा मन मांजिए पाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुर बचनी सुखी उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होई है सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिया पाई हृदय होवै प्रगास प्रगट भया प्रताप प्रपाई मौल्या तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई अहन सलागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई निचर पाया था ओ जिस पर तीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेब पाई हों तिसके बल जाओ ओह निर्गुणी आरे पालदा पाई दे नितावे थाओ रिजक संबाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुरसा चा पेटिए पाई पूरा तिस करवाओ तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार कर कृपा नजर निहालिया पाई कीतो ने अंग अपार
ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਣਾਗਤੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਗਰਬ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਵਾਰਾ ਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए धूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुहका लै उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुरु जिना मिलाय उन प्यारे साचा नाम संभाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे

जिन्ना हरे आप कृपा करे से गुरसम जाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया मन मुख खादे गुरमुख उबरे जिन्नी सच नाम चित लाया बिना मैं जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। धंधा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साध ना पाया जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया रसना हर साध आया सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया। बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख्या गम है कहो कित बिद पाई है तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है। गुरपूरै वे खा लिया गुरसेवा पाई है सलोक महला तीजा। ज्यो तन कोलू पीड़ी है रतना पूरी डेह जियो वन्या चौखनिया सच्चे संदड़े ने नानक मेल न चुकई राती अतैडे महला तीजा। सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठे कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग न उतरै ब्याह न लगै के हे पौड़ी। हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर धंदै लाएंदा। एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा। जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा सलोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवा अपना हों तिन बलिहार जाओ। महला तीजा मनमुख मान्या जित है दूजे लगै जाए। तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए। एह मनवस नाया वही थके कर्म कुमाए पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीर्थ नाए। मन की सार न जाननी हम मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड़ भाग वस्या मन आए। पै पया मन वस होवा हम मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए। सदगुर मिले ना हो पाया नानक सुख समाए पौड़ी। एह भूप तराने रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग सुंब खिन मैं लै जावना। चलदिया नाल ना चलै सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना। ओ वेला हथ न आवै फिर पछतावना सलोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलना पाए नी जमै तै मर जाहे। सहसा रोग ना छोड़ई दुखी मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्स लेहे सब दे मेल मिलाहे। महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ
ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरै दुह चारण बद नाओ। नानक गुरमुख बख्शीऐ से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी जो सेवै सत मुरार से भव जल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया। से दरगै पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया। हर सेवै से ही पुरख जिन्ना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तैं वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार। जित खादै मन तृप्तिऐ पाईऐ मोख द्वार। एहो भोजन अलब है संतो लब्बै गुरविचार। एह मुदामणी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखिए और तार। एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल। नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तोर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए। आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए। नानक विण कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाए। पौड़ी बह सखिया जस गावे गावन हारिया। हर नाम सलाहो नित हर कौ बलिहारिया। जिन्नी सुन मनिया हर नाओ तिन्ना हो वारिया। गुरमुखिया हर मेल मिलावन हारिया। हों बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया। सलोक महला तीजा। विण नामै सब भरम दे नित जग तोटा संसार। मनमुख कर्म कमावणे हों मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागै सहजे सोवै गुरमुख अंदन उस्तत होवै। मनमुख परमै सहसा होवै अंतर चिंता नींद ना सोवै। ज्ञानी जागै सवै सुभाए नानक नाम रतियां बल जाओ। पौड़ी से हर नाम ते आवै जो हर रतिया। हर एक ते आवै एक इको हर सत्या। हर इको वरतै एक इको उत्पत्या। जो हर नाम ते आवै तिन डर सट कत्या। गुरमती देवै आप गुरमुख हर जपया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित के सो जी पाए। विंडठा क्या सा लाही है अंदा अंद कमाए। नानक शब्द पछाणिया नाम वसै मन आए। महला तीजा। एका बाणी एक गुर एको शब्द विचार। सच्चा शब्दा हट सच रतनी परे भंडार। गुर किरपा ते पाई अन जे देवै देवन हार। सच्चा शब्दा लाभ सदा खटिया नाम अपार। वेख विच अमृत प्रगटिया करम पियावन हार। नानक सच सलाही है तन सवारन हार। पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई। जे को बोलै सच कूड़ा जल जावई। कूड़ आरी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावई। जिसार होए किरपाल सो नाम ते आवई। हर गुरमुख नाम आराद कूड़ पाप लह जावई। श्लोक महला तीजा। सेखा चौ चकिया चौ वाया एहो मन इकत कर आण। एहड़ तेहड़ छड़ तू गुर का शब्द पछाण। सतगुरु अगै टह पाओ सबके जाने जान। आसा मनसा जलाए तू होए रहो मेहमान। सतगुर कै पाणे पी चलै तां दरगै पावै मान। नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पैनण तिग खाण। महला तीजा। हर गुण तोटण आवई कीमत कहण ना जाए। नानक गुरमुख हर गुण रवै गुण मै रह समाए। पौड़ी हर चोली देह सवारी कड पैदी भगत कर। हर पाठ लगा अधकाई बहु बहु बिद पांत कर। कोई बूझे बूझण हारा अंतर बवेक कर। सो बूझे हो बवेक जिस बुझाए आप हर।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਨ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾਇਆ ਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹੇ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿੱਤ ਤਿਸ ਹਾਂ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਡਿਤ ਮੈਲ ਨਾ

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चै नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगै खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी। जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी, जो गुरमुख

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परे ओ काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत चेरी। तू जम बपरी है हेरी प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही, अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा। निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ, कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पव सागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुधारा भयान लुटावै, मन मेरे पुले।

आओ छिन छिन तन छीजे जरा जनावे तब तेरी ओक कोई पानी हो ना पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा। संत हो मन पमने सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे। रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना। अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जवाले। खाट मांगो चौपाई सरहाना अवर तुलाई। ऊपर कौ मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो। कह कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जानिया। राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा। नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ। जह चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द बजंता। ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही। नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर। जय अनहत सूर उजियारा तह दीपक जलै शंशारा। गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया। कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शिवाई हो। तो पै दुगनी मजूरी दहाओ मोको बेडी देहो बताई हो। रिबाई बेडी देन न जाई देख बेडी रे उस

तुम शरणागत राजा रामचंद, कहरव दास चुमारा चमरटा गाठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। हरवदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैन

हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन कौ कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दास संदास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी भूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उचे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चातरक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह न सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उतम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावै पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तो वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की, जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उर धार विचार, मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्टा गोचर परम्पर स्वामी, गुरपुरै प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पहे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाम शेख हट बोलै मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हर हृदय सत्यावो, इउ हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर एव हर हर नाम ते आई। हर दरगह पावै फिर जन्म ना आवै, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी, हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी, तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी, नानक हर पय है सिखाई। तनासरी महला चौथा, हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट, एव पण हर नाम मोरारी। मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीर्त कर बनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम, हर जसी उत्तम काम, जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी, हम तिनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ। शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हाँ पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै, सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ, हर दर्तन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी, जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जां कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े, ता सर्व सुख पाव है मेरे मना। जप मानो सतनाम सदा सतनाम, हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा,

सहा सब तुझी माहे समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहै दरबारे सर्ब जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे जो भावै त्यो राखो स्वामी जन नानक सरन दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो।

ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोजी पाई सबको मीत हमें आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरा राजन बिनसो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानकर मैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो भयो प्रगास सदा सुख मन मैं।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी जी की कह ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आय चिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलवख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसेओ नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै विश्राम निद पाई। तुम करो

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एकै गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन थाप्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देखो कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गई संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेश लोभ मोह महापौजल तारे। रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवां कार अठवां दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई। नाम ने दरिद सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रव रहा सर्व ठाई। रहाओ ता को कोई न पहुंच नहारा, जा कै अंग गुसाई। जम की त्रास मिटै जिस सिमरत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्ब देह गर्ब है भूमवंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हार है। रहाओ आन त्याग पै के आसर सरन सरन कर आए, संतान अनुग्रह।

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बन जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी होय अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गा।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ सिओ लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम सिव मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

संतन का संग पावा, सोग अगन में मन ना व्यापै, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पुकारे कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दोवे सोहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से शोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझे

जय जय देखो तै तै स्वामी कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार। करन हार रखवाला होवा जा कांत न पारा वार, नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढे मार। तनासरी महला पंजवा करनामा पड़ताल, एको अंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो दृष्ट प्रभ धारो, कृपा करता रहो पूजा गै कूप ते काढ़ लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दोखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन रख नहारा, नाम सिमरावो सरन सूरे। पत त्यो धारणा जी जंत तारना, बेदो चार नहीं अंत पायो, गुणै सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा, भगत वछल।

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर। पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे।

मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सुनाने सगलिया शर्म कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख विधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखैदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने सा तीर्थ मजना साचना लागे मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम त्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिरसर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में सा समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साहब दोरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवार नहारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो
ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੰਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉਂ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੱਚ ਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਇਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਈ ਆ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੀਓ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਲਾ ਲੇਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ ਗੁਣੀਆ ਚਾਰ ਨਹੀਂ।